आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

भगवती श्री दुर्गा अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी भगवती श्री दुर्गा ही संपूर्ण विश्व को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मादि देवता उत्पन्न होते हैं, जिनसे विश्व की उत्पत्ति होती है। इन्हीं की शक्ति से विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्व का पालन और संहार करते हैं। ये ही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता।

0: माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस तत्वम तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जल की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलु रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्य के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई 1000 वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई 1000 वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी। उमा, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृतज्ञ की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धकों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्यों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल, मैकेनिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451551 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सुबह सवेरे के इस सुहाना मौसम में हम लेके आ गए बानी राउर स्वास्थ्य वर्धक प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल, जिमे हमने के रखे निसन आपन सेहत के ख्याल, आज जाने निसन ढेर सारा हेल्थ टिप्स। दोस्त लोग हमरा की तो रउआ पहचानत ही बानी कि हम है राउर रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले हमरा ओर से सादर नमस्कार, सुप्रभात। दोस्त लोग, आज हमने के अपना कार्यक्रम की शुरुआत में जानल जाई मानसून में सेहत खातिर उपयोगी छुहारा के घरेलू नुस्खा। दुर्बलता होके पे 4 छुहारा 1 ग्लास दूध में उबाल के ठंडा कर ली। प्रातः काल रात के सोते समय उनके गुठली अलग कर दी और छुहारा के खूब चबा चबा के खाई और दूध पी जाई। ये लगातार 3 से 4 मास सेवन करे से शरीर के दुबलापन दूर होला और चेहरा भर जाला, सुंदरता बढ़ेला और बाल लंबा व घना होला और बलवीर्य के वृद्धि होला। ई प्रयोग नवयुवा, प्रौढ़ और वृद्धा आयु के स्त्री पुरुष सबका खातिर उपयोगी और लाभकारी है। घाव और गुहरी होके पे छुहारा के गुठली के पानी के साथ पत्थर पर घीस के एकर लेप घाव पर लगावे से घाव ठीक होला। पलक पर गुहेरी होके ता ओई पर ई लेप लगावे से भी ठीक होला। दमा के रोगी के प्रतिदिन सुबह शाम दो छुहारा खूब चबा के खाए के चाही, इसे फेफड़ा के शक्ति मिलेला और कफ व सर्दी के प्रकोप कम होला। तदोस लोग, ई रहल है छुहारा के घरेलू नुस्खा। अब चली जानल जाओ पत्ता गोभी के औषधीय लाभ। पायरिया रोग में पत्ता गोभी के कच्चा पत्ता 50 ग्राम नित्य खाए से पायरिया व दांत के अन्य रोग में लाभ होला। बाल गिरे के समस्या में पत्ता गोभी के 50 ग्राम पत्ता प्रतिदिन खाए से गिरल होकल बाल उगावेला। माथे पे पत्ता गोभी के रस पिए से घाव ठीक होला। एकरा रस के आधा ग्लास 5 बार पानी मिला के पिए के चाहिए। घाव पर एके रस के पट्टी बांधी, परिणाम शूल होके पे करमकल्ला के रस पिए से ए रोग ठीक हो जाला। एके कप एके 3 बार पी। एकर कच्चा पत्ता भी खा सकता नहीं, एकर ताजा रस ही लाभ करेला। एक कम से कम 2 सप्ताह पी। कब्ज होके पे कमरकल्ला के कच्चा पत्ता नित्य खाए से पुराना कब्ज दूर हो जाला। शरीर में व्याप्त विजातीय पदार्थ, दोषपूर्ण पदार्थ बाहर निकल आवेला। कैंसर में प्रातः खाली पेट सर्वप्रथम कम से कम आधा कप कमरकल्ला के रस नित्य पिए से कैंसर के आरंभिक लक्षण बड़ी आंत के प्रदार ठीक हो जाला। नींद के कमी, पथरी और मूत्र के रुकावट में ये सब में पत्ता गोभी लाभदायक है। एकर सब्जी घी से छौंक लगा के बनावे के चाहिए। कोलाइटिस होके पे ये रोग में आंत में सूजन आ जाला, त रोगी के भ्रम हो जाला कि हमने के भोजन नहीं के पचत, बात बात में निराश होके वाला ये रोग प्राय हो जाला। त ऐसे में ऐसे निजात पावे खातिर 1 ग्लास छाछ में 1/4 कप पालक के रस, 1 कप कमरकल्ला के रस मिला के नित्य दिन में 2 बार पी। कुछ ही दिन में कोलाइटिस रोग ठीक हो जाए। कोलाइटिस रोग में अन्य उपचार में 2 बार उपवास रखी। 3रा दिन 1 ग्लास पानी, 3 चम्मच शहद, 1/2 नींबू के रस मिला के पी। नाश्ता में 1 कप गाजर के रस, भोजन में दही 1 कप गाजर के रस, 1/4 कप पालक के रस मिला के पी और शाम के भोजन में पपीता खाएं। दोस्तों आप जानल जाई दिल की धड़कन तेज होके तका करे के चाहिए। दिल के धड़कन असामान्य होला, दिल के कमजोरी के प्रतीक होला, इसे रक्त संचार भी बढ़ जाला और घबराहट जैसन लागेला। एकर घर पर सामान्य इलाज इस प्रकार कहल जा सकेला कि 10 ग्राम अनार के पत्ता के लेके 10 ग्राम पानी में डाल के हल्का आंच पर उबाली। ये काढ़ा सुबह शाम प्रतिदिन पिए से दिल मजबूत बनेला और दिल के धड़कन सामान्य होला। गाजर के 200 ग्राम ताजा रस में 100 ग्राम पालक के रस मिला के सुबह सुबह प्रतिदिन पिए से दिल के धड़कन काबू में रहेला, दिल मजबूत रहेला और दिल से संबंधित सब विकार दूर होला। तो दोस्त लोग अब हम बतावे जात बानी जब पेट में जलन होके तब का करे के चाहिए। पेट में कई बार तेज जलन होला, कभी इतना तेज होला कि लागेला जैसे पेट में आग लग गई होके। ये जलन खान पान पर भी निर्भर रहेला। मिर्च ना खाए वाला या कम खाए वाला के ज्यादा मिर्च के भोजन खाए के पड़ जाए तभी भी ये परेशानी आ सकेला। कभी शरीर में गर्मी बढ़ जाए से भी जलन होला। पेट हमनी के शरीर के केंद्र होला, इमे कोनो भी प्रकार की खराबी ना होके के चाहिए। एकर उपचार ई प्रकार है कि पुष्कर मूल, एरंड के जड़, जौ और धमासा चारों के मोटा मोटा कूट के शीशी में भर ली आ एक ग्लास पानी में 2 चम्मच चूर्ण डाल के उबाली। जब पानी आधा कप बचे तब उतार ली और आधा सुबह व आधा शाम के पी लिया करी, ऐसे पेट के जलन दूर हो जाई। ये प्रयोग 8 दिन तक करके बंद कर दी। ये प्रयोग के साथ उचित पथ्य आहार के सेवन और अपथ्य के त्याग रखल आवश्यक है। आहार में प्रायः कच्चा दूध और पानी 1-1 कप मिला के इनमें 1 चम्मच पीसल मिश्री या चीनी डाल के फेंट लगाएं। और खाली पेट चाय या दूध की जगह पी, चाय या दूध ना पी। इतना दिन में 2 या 3 बार ई लस्सी पी। भोजन के अंत में आगरा के पेठा या पाकल केला जरूर खाएं। दोस्तों अब हम लेम रोवलो से जाए के अनुमति त एगो प्यारा मुस्कान के साथ आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत आ रखी रहुआ आपन सेहत के ख्याल। नमस्कार।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा मैं भी बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
7: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
8: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
7: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
2: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
9: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
10: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
9: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
10: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
9: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
10: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
9: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
11: तो क्या हुआ कि कृष्ण की मदद से वीरान पड़ा खांडव वन आलीशान नगर में बदल गया? ऊंचे ऊंचे भवनों, बाग बगीचों, चौड़ी सड़कों और उनके किनारे कतार में सजे पेड़ों वाले इस नगर को कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ नाम दिया और युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का महाराज घोषित किया। भीम युवराज बने, अर्जुन सेनापति और नकुल सहदेव ने दूसरी छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभाली। मैं पांडवों के इस साम्राज्य के विस्तार का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो सब देखती है। मैंने देखा है कि इसी दौरान बलराम और भीम एक दूसरे के करीब आए और भीम ने बलराम को अपना गुरु बना लिया। जब इंद्रप्रस्थ अपना आकार ले रहा था तब कृष्ण और बलराम द्वारका लौटने की तैयारी कर रहे थे।
12: इंद्रप्रस्थ के वासियों, नागरिकों, सभासदों, आज द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण और भाता श्री बलभद्र इंद्रप्रस्थ से विदा रहे हैं। नगर वासियों से अनुरोध है कि भारी संख्या में राजमाता कुंती के महल में पहुंचकर दोनों भ्राताओं को विदा करें। द्वारकाधीश कृष्ण की जय। भैया
13: ये सब क्या हो रहा है बुआ? पूरे इंद्रप्रस्थ को इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता थी?
14: अब ये सब मैं कैसे बताऊं कृष्ण, ये तो तुम सब भाइयों की आपस की बात है, उनकी भावनाएं हैं, तुम अपने भाइयों से ही पूछ लो।
15: ये इंद्रप्रस्थ हमसे अधिक आपका है द्वारकाधीश, आप तो यहाँ के कण कण में व्याप्त है।
16: पर सारे नगर वासियों को यहाँ क्यों बुलाया?
17: इसलिए दाऊ की सारी प्रजा आप दोनों भाइयों को देव तुल्य मानती है। फिर कोई ये ना कहे कि प्रस्थान के समय हमने उन्हें आपसे मिलने का अवसर भी नहीं दिया।
18: अरे अर्जुन, तुम्हारी आंखों में आंसू,
17: हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे गोविंद।
12: द्वारकाधीश कृष्ण की जय। भैया बलराम की जय।
13: शांत, आप लोग शांत हो जाएं। साथियों, इंद्रप्रस्थ से केवल मेरा शरीर जा रहा है, मन से मैं सदा आपके साथ ही हूँ।
19: कुछ दिन और रुक जाइए ना केशव, मैं बलराम भैया से गदा युद्ध के कुछ और दांव सीख लूंगा।
13: तुम्हें तो प्रेम प्रदर्शित करना भी नहीं आता भीम, विदा के क्षणों के बीच एक गदा कहाँ से ले आए। भैया भीम, हमें जाना तो पड़ेगा ही, तुम सब तो जानते ही हो कि मेरी द्वारका कैसे संकटों से घिरी है।
14: मैं जानती हूँ केशव, इसलिए तुझे रोकूंगी नहीं, पर बस द्वारका पहुंचकर अपने भाइयों को भूलना मत।
13: ऐसा क्यों कहती हो बुआ? आपकी चिंता मैं समझ रहा हूँ, पर आपके पुत्र अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है,
20: और यदि भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ी तो हम स्वयं अपने पांडव भाइयों के पास पहुंच जाएंगे। बुआ
13: देखो बुआ, अब तो दाऊ ने भी वचन दे दिया है।
14: तुम दोनों से तुम्हारी बुआ को बहुत आशाएं हैं माधव।
13: बुआ अब तो बस मंगल ही मंगल होगा, हमें आशीर्वाद दीजिए, देर हो रही है। और हाँ पार्थ, आर्यवर्त के विस्तार के लिए निकलना तो द्वारका अवश्य आना।
21: तुम कहाँ हो माता, मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? देखो माता देखो, जिस भरत वंश की रक्षा के लिए मैं देवव्रत से भीष्म बन गया, वही भरत वंश आज मेरी आंखों के सामने अपने अंत की ओर चल रहा है। देखो माता, तुम्हारे पुत्र के आज तक के सारे प्रयास, सारी साधना, सारा तप धूल में मिलने जा रहा है। देखो माता देखो, वहां आकाश के सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठी मेरे परम प्रतापी पिता शांतनु की आत्मा किस तरह रो रही है, और तुम्हारा ये दिग्विजय पुत्र असहाय है।
22: कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? विदुर, कुलगुरु कृपाचार्य, क्या मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है किसी के पास? उत्तर दें आचार्य द्रोण, क्या हो गया है आप सबको? कोई यहां है भी या नहीं?
23: सभी यही है महाराज, पर ये मौन हमारी विवशता है।
24: मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं महाराज, जब आपने पांडवों को हस्तिनापुर से अलग ही कर दिया है तो उनके संबंध में सोचने की आवश्यकता ही क्या है?
22: मैंने उन्हें हस्तिनापुर से अलग किया है आचार्य द्रोण, अपने हृदय से नहीं। मैं तात भीष्म और हस्तिनापुर की प्रजा को बताना चाहता हूं कि पांडव आज भी मेरे प्रिय हैं।
24: यदि यह सत्य है तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है महाराज। पितामह भीष्म को समझाने का उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। आपका बिना बुलाए इंद्रप्रस्थ जाना कई आशंकाओं को जन्म देगा।
0: मैं कुरुराज का कुलगुरु हूं महाराज। मेरा कर्तव्य है कि आपको वो सलाह दूं जिससे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के संबंध गहरे हों। इसलिए कहता हूं कि ये पांडवों के लिए प्रेम प्रदर्शित करने का समय नहीं है।
23: कृपाचार्य ठीक कह रहे हैं महाराज। आप इंद्रप्रस्थ जाकर पांडवों से मिलने का विचार त्याग दें, क्योंकि आपके इंद्रप्रस्थ जाने का विरोध सबसे पहले दुर्योधन करेगा।
11: अब खून था जो उछाल मार रहा था, मतलब इधर धृतराष्ट्र पांडवों से मिलने के लिए उतावले हो रहे थे तो उधर अर्जुन हस्तिनापुर जाने की सोच रहा था। पर अर्जुन का यह विचार द्रौपदी को समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों।
1: आपके मन में अचानक हस्तिनापुर जाने का विचार कैसे आया पार्थ? दुख, छल और अन्याय के अलावा क्या दिया है हमें हस्तिनापुर ने?
17: हस्तिनापुर का नाम सुनते ही

0: हमने हस्तिनापुर से अलग अपना राज्य स्थापित कर लिया है, तब आप वहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? क्या अब भी कुछ अपमान सहना शेष है?
1: अरे पहले सुन तो लो पांचाली।
0: कहिए।
1: ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर चाहते हैं कि हमारे आर्यावर्त के अन्य राज्यों से अच्छे संबंध बने, इंद्रप्रस्थ की शक्ति का विस्तार हो, इसीलिए वो मुझे एक यात्रा पर भेजना चाहते हैं।
0: ठीक है, पर अब आप हस्तिनापुर से कौन

0: मुझे आपकी प्रतीक्षा रहेगी, मन उदास रहेगा आपके बिना।
1: मेरा मन भी दूर कहां जाना चाहता है, पर पांचाली, इंद्रप्रस्थ के लिए मुझे जाना ही होगा। और फिर शेष भ्राता तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे।
0: आपकी जगह कोई नहीं ले सकता पार्थ, मेरे लिए सबका अलग अलग स्थान है। ज्येष्ठ धर्म की सीमाओं में बंधे रहते हैं, भीम इतने सीधे और सरल हृदय के हैं कि प्रेम का अर्थ ही नहीं समझते। नकुल और सहदेव ऐसे संकोची हैं कि वो आज भी मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते। आप पांचों हथेली की पांच उंगलियों के जैसे हैं।
1: फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
0: आप अपने इस महान लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी।
2: शांत शांत शांत।
3: उद्धव पहले ये बताओ कि हमारी द्वारका कैसी है।
4: जैसी छोड़ गए वैसी ही है गोविंद, पर संकटों ने अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है।
5: कैसा संकट, तुम इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना उद्धव?
2: होगा क्या दाऊ, उद्धव को लगता होगा कि कहीं हमें द्वारका भी ना छोड़ना पड़े।
4: नहीं गोविंद, आपके होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता, पर जरासंध अभी भी हमें ढूंढ रहा है। आपकी अनुपस्थिति में हम सब बहुत डरे हुए थे।
2: डर तो मुझे भी लगता है उद्धव।
5: डरने की क्या बात है कृष्ण, वो जरासंध एक बार मेरे सामने पड़ जाए तो मैं अकेले ही उसका वध कर दूं।
2: नहीं दाऊ, उसे कोई चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही हमने उसके जमाई कंस का अंत करके उसे बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। उसे हम पर क्रोधित होने का पूरा अधिकार है।
5: ये कैसा अधिकार है, वो अत्याचार करता रहे और हम सहन करते रहे।
2: जाने दीजिए दाऊ, अभी उसका समय है, कभी हमारा समय भी आएगा, इसमें शीघ्रता क्या है।
0: तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो पुत्र।
6: जहां भी जाना धर्म की रक्षा करना अर्जुन, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी।
1: मैं धर्मराज का अनुज हूं भैया, कभी अपना धर्म नहीं भूल सकता, मुझे आशीर्वाद दे।
7: गंगा के इस पवित्र जल का पान करे अर्जुन, यहां से गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। यहीं पर महादेव शिव ने गंगा को लोक कल्याण के लिए अपनी जटाओं में धारण किया था।
1: पुरोहित जी, ये भूमि जितनी पावन है उतनी ही सुंदर भी। मैं कुछ देर तक जलधारा में खड़ा होकर देवी गंगा के प्रेम और ममता का अनुभव करना चाहता हूं।
8: दिन रात युद्ध अभ्यास में डूबे रहने वाले अर्जुन को बहुत दिनों बाद शांति का अनुभव हुआ। गंगा की धारा में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। दरअसल केवल अर्जुन को ही नहीं, पांचों पांडवों को जीवन के बिल्कुल नए नए अनुभव होने लगे। शायद ये कृष्ण की प्रेरणा का असर रहा हो सकता है। वैसे क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई शक्ति है जो आने वाले खास समय से पहले ही उसके आने का इशारा करने लगती है? हाँ, नहीं? सुनते रहिए महाभारत।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बहु, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
5: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
10: शक्ति की उपासना, आस्था की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लेकर आया है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
11: इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के जदयू जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार पटेल जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर परिवार खुशहाल रहे और गोपालगंज में आपसी प्रेम, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।
10: विजयादशमी का ये पावन पर्व हम सभी को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री प्रमोद कुमार पटेल जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
12: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
13: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
12: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
13: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
12: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
13: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
12: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
14: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
15: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
14: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
15: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: भक्ति की शक्ति, आस्था की ज्योति और अधर्म पर धर्म की विजय का महापर्व है नवरात्रि और विजयादशमी।
1: इस पावन अवसर पर श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी, प्रदेश महासचिव जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार सह भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 मांझा ने समस्त क्षेत्र वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, हर परिवार में सुख समृद्धि आए और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे का भाव और सशक्त हो।
1: ये विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई आशाओं का संचार करे तथा सत्य और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जय माता दी, शुभ दशहरा।
2: ए बाबा, घर भर के लोग बीमार बा, कहाँ जाएं?
3: दगा है इतना परेशान बालू, चल जा मिर्जापुर मोड़ डॉक्टर बाबा के लगे।
4: जी हाँ, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, पागलपन, बांझपन, स्त्री रोग, शिशु रोग, गठिया, बवासीर, भखंदर, आँख, कान, नाक और दांतों के सफल इलाज के लिए आप भी मिर्जापुर मोड़ पर मिलिए डॉक्टर वशिष्ठ बाबा से।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे शहर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अलग अलग जगहों से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। कोचायकोट क्षेत्र में मुख्य नहर के पास एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कुछ ही घंटों में पुलिस ने दबोचा और कुख्यात विशाल सिंह को मिली कोर्ट से जमानत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से पूरे उत्साह के साथ जिले में मनाया जा रहा है। ऐसे में गोपालगंज शहर में विभिन्न पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आने और जाने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियों का आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ DM और SP ने पूरे शहर का भ्रमण किया, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। इस दौरान ट्रैफिक DSP सोमेश मिश्रा, सदर SDO डॉक्टर प्रेरणा सिंह और नगर थानाध्यक्ष तथा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी गण इसमें शामिल हुए। वहीं पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस उपाधीक्षक रक्षित सुबोध कुमार ने भी पुलिस फोर्स के तैनाती को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से निर्देश प्राप्त किया। एक एक बिंदुओं पर सभी पदाधिकारियों ने निरीक्षण कर पूरे जिले में और शहर में शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा का त्योहार संपन्न कराने के लिए रणनीति बनाई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। नगर थाना की पुलिस ने आज अलग अलग जगहों से 3 लोगों को चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंबेडकर चौक के पास वाहन जांच करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस को देखकर आरोपी हीरो मोटरसाइकिल से आ रहा था और पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद मुश्ताक, पिता मोहम्मद मकसूद, साकिन वृंदावन, थाना उचका गांव का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने गाड़ी के कागजात से संबंधित आवश्यक जानकारी नहीं दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो यह गाड़ी चोरी की निकली। तुरंत आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरी की गाड़ी को जब्त कर इसमें आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं नगर थाना की पुलिस ने बंजारी चौक ओवर ब्रिज के पास भी वाहन जांच अभियान शुरू किया था। इस दौरान बंजारी पुरानी सड़क की ओर से पोस्ट ऑफिस चौक के तरफ आ रही एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 लड़कों को पुलिस ने रोका। दोनों संदिग्ध स्थिति में भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ा। पूछने पर एक आरोपी आनंद कुमार, पिता छविला गुप्ता, साकिन सहलादपुर, थाना माझागढ़ का निवासी है, जो वर्तमान में बंजारी पुरानी रोड ब्रह्म स्थान के अपने पास रहता है। इसके साथ एक विधि विरुद्ध बालक को भी पकड़ा गया। दोनों की तलाशी लेने पर इनके पास से एक चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इनके किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में होने की आशंका पुलिस को हुई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ा है और मोटरसाइकिल तथा चाकू इत्यादि को जब्त कर अब इस मामले में पुलिस बारीकी से अनुसंधान कर रही है और फिलहाल दोनों को हिरासत में रखा गया है। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र में आज सुबह एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कुचायकोट के डोमन बंजरिया गांव के सामने नहर की पटरी के पास साइफन के नजदीक झाड़ियों में एक शव दिखाई दिया। सुबह लोग शौच के लिए निकले थे, तभी ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी। मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। इसकी सूचना कुचायकोट थाना की पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक के शरीर पर सिर्फ अंडर वियर के अलावा कोई अन्य कपड़ा नहीं था। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और मौत किन परिस्थितियों में हुई है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ। FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है और युवक की पहचान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं मृतक के शव के पास से कुछ ही दूरी पर पानी के अंदर युवक का बाकी का कपड़ा पुलिस ने जब्त किया है। अब एक एक बिंदुओं पर पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। इस घटना में अब तक पुलिस के तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को कारित करने वाले आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस वहां पहुंची और FSL की टीम के माध्यम से आवश्यक अनुसंधान किया गया। वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किए गए। किशोरी को आवश्यक चिकित्सा और उपचार के लिए सदर हॉस्पिटल में भेजा गया। इस मामले में कांड दर्ज करते हुए पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव के रहने वाले कुख्यात अपराधी विशाल सिंह को बताया जा रहा है कि भागलपुर जेल से जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या, रंगदारी समेत दर्जनों आपराधिक मामलों में इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वर्तमान में यह आरोपी भागलपुर जेल में रह रहा था। अभी सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार कुख्यात विशाल सिंह को जमानत मिल गई है। हालांकि इस पर गोपालगंज पुलिस की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विशाल सिंह को जमानत मिलने के बाद भागलपुर जेल से रिहा किया गया है। बताया जा रहा है कि कुख्यात विशाल सिंह के जेल से छूटने के बाद जहां पुलिस महकमे में इसके आपराधिक गतिविधियों पर सख्त निगरानी की रणनीति बनाई गई है, तो वहीं इसकी रिहाई से प्रबुद्ध जनों में डर और दहशत की चर्चा भी हो रही है। दुष्कर्म के नामजद आरोपी अफताब आलम पिता मुन्ना आलम साकिन सुंदर थाना मशरख जिला छपरा को विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद आरोपी पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस इस मामले में सभी बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक अनुसंधान भी कर रही है। वैज्ञानिक साक्ष्यों और अनुसंधान के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर शीघ्र ही अनुसंधान पूर्ण कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोष सिद्ध सुनिश्चित करने को लेकर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज अपने कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान विजयपुर स्थित राजू शाह के घर के सामने सिपाया ढाला की ओर से आ रहे एक मोटरसाइकिल को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इसके पास से भारी मात्रा में शराब मिली है। पकड़ा गया आरोपी मुंशी यादव पिता अवध चौधरी साकिन विदेशी टोला थाना थावे का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके बैग के अंदर से 15 लीटर से अधिक देशी शराब को पकड़ा है। इसके बाद मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा सबजपुरा अनुसंधान प्रक्षेत्र में जल स्मार्ट एवं पुनर्योजी खेती विषय पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, खेती की लागत कम करने, किसानों की आय बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से किसानों को अवगत कराना बताया जा रहा है। प्रक्षेत्र दिवस के दौरान प्रधान सचिव ने संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों और मॉडलों का अवलोकन किया। इनमें जल स्मार्ट कृषि पद्धति, रेस्ड एवं संकेन बेड प्रणाली, समेकित कृषि जलीय प्रणाली, सूक्ष्म सिंचाई, धान की सीधी बुआई, जलवायु अनुकूल धान की किस्में, धान परती प्रबंधन, फसल विविधीकरण तथा कृषि वानिकी मॉडल प्रमुख। उन्होंने इन तकनीकों की सराहना करते हुए इन्हें अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का कृषि विभाग इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सचिव महोदय ने अनुसंधान प्रक्षेत्र की विभिन्न आधारभूत संरचनाओं तथा बीज प्रसंस्करण इकाई का भी भ्रमण किया। वहाँ बीजों की ग्रेडिंग, छटाई और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर किसानों ने प्रधान सचिव के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। किसानों ने बताया कि संस्थान द्वारा समय समय पर उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी, गुणवत्तापूर्ण बीज, पौध सामग्री एवं अन्य कृषि आदान उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसानों ने कहा कि संस्थान के इन प्रयासों से उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा कृषि उत्पादन एवं आय बढ़ाने में सहायता मिल रही है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जल की अनिश्चित उपलब्धता, मृदा क्षरण और खेती की बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों से निपटने में जल स्मार्ट एवं पुनर्योजी खेती की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि दक्ष सिंचाई, जलवायु अनुकूल किस्मों और विविधीकृत कृषि प्रणालियों को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। इससे कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर द्वारा कृषि अनुसंधान संस्थान पटना में 3 दिवसीय वैज्ञानिक खेती पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आत्मा सारण के वित्तीय सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में सारण जिले के 25 किसानों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर एके सिंह तथा कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर एनएस दास ने किया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने पान की खेती में वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को पान की वैज्ञानिक खेती, उन्नत उत्पादन तकनीकों, रोग एवं कीट प्रबंधन तथा फसल प्रबंधन की आधुनिक विधियों से अवगत कराना था। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को पान की खेती के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी जानकारी दी गई, साथ ही पान के खेतों का भ्रमण कराकर उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, ताकि वे वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार कर सके। कार्यक्रम के कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एन आजमी, डॉक्टर प्रभात कुमार ने प्रशिक्षण के संचालन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर रंजीत कुमार सहित संस्थान के सभी वैज्ञानिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई तथा किसानों को पान की उन्नत खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की। इस दौरान संस्थान के निदेशक शोध डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि पान की वैज्ञानिक खेती किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किसानों को उन्नत उत्पादन तकनीकों, संतुलित पोषण, रोग एवं कीट प्रबंधन तथा बेहतर फसल प्रबंधन की जानकारी देना आवश्यक है। बिहार के पान को GI टैग मिलने से इसकी विशिष्ट पहचान को लेकर मजबूती मिली है। आवश्यकता है किसान वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर पान की गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार करें, ताकि उन्हें बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। बिहार कृषि विश्वविद्यालय किसानों तक नवीनतम कृषि तकनीकों को पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और आज दूसरे दिन नवरात्रि का त्योहार पूरे धूमधाम से जिले में मनाया गया। माँ थावे भवानी के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। सभी लोगों ने माता की पूरी उत्साह और आस्था के साथ पूजा आराधना की। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिन पूजा आराधना करने पहुंच रहे हैं। वहां भी दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे शहर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अलग अलग जगहों से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। कोचायकोट क्षेत्र में मुख्य नहर के पास एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कुछ ही घंटों में पुलिस ने दबोचा और कुख्यात विशाल सिंह को मिली कोर्ट से जमानत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
10: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
9: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
10: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
9: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
10: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
9: अभी कॉल करें 92-899-22-567 या 97-714-86-165
10: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
11: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
12: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
11: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
12: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
11: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
12: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
11: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
9: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
13: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
14: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
13: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
14: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
13: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3092 या 90765-65750।

0: टक टक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
2: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
7: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
8: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
7: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
9: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती रेशमी ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती गमछा लुंगी साड़ी कुर्ता कंबल शॉल जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ऑनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AM पर।

0: ना।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर

एमए अकबर जी से ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।

आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए

0: कलेक्शंस। और तो और वहाँ इम्पोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहाँ हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034648652 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665,
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: के चेहरे से
1: को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
3: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी।
2: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
4: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुदैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
4: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
3: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
7: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि

0: कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर 1 दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका, 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर। जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती है शांत। 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए। अमर उजाला की

0: सुर्खी है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस नेशन वाइड आउटरीच ड्राइव टू इंश्योर नो एलिजिबल वोटर इज लेफ्ट आउट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। 4 लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट किल्ड इन लैंडमाइन ब्लास्ट एट LOC इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडियाज इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस क्रॉसेज 111 करोड़। एंड इन बैडमिंटन डेनमार्क ओपन 2026 टू बिगिन टुडे इन ओडेन। And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor.
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता। ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
4: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
5: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
4: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
5: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
4: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
5: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6205262112 पे।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी

0: कॉल करें 91-600-26-64-498 पे।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।

0: बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का संचार करे।
3: इसी मंगल कामना के साथ गोपालगंज के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
2: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर परिवार में सुख समृद्धि आए, समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो तथा हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आए।
3: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
8: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
7: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
8: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
7: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
8: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
7: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
11: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
12: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
11: लेकिन अगर दर्द

0: सुबह का इंतजार ना करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
6: किस बात से डर रहा है यार? एज डिफरेंस। हर लड़की है ना अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है। फिगर उसके पास है, फादर तू है।

0: बचपन बचपन
1: कैबिनेट ने पिछले 12 वर्षों में बिहार के विकास में अप्रतिम योगदान के लिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है।
2: तीन महत्वपूर्ण चीजों पर सबकी सर्वसम्मति से सहमति बनाई गई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार के प्रमुख के रूप में लोक सेवा के निरंतर 25 वर्ष पूरे होने पर बिहार मंत्री परिषद एवं बिहार की समस्त जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन किया गया। पिछले 12 वर्षों में बिहार के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए अभूतपूर्व सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं भारत सरकार के प्रति बिहार मंत्री परिषद हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करती है।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय से बिहार को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भागीदार बनाने और राज्य को निवेश, रोजगार, उद्यमिता तथा सुशासन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सभी संभव प्रयास करने का संकल्प लेने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रदेश के बाढ़ पीड़ित किसानों के बीच फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि का वितरण कल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बाढ़ की समस्या और उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य दीपावली तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की सभी पंचायतों में 6 माह तक विशेष खेल प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत विभिन्न खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
2: तो सभी पंचायतों में टैलेंट के तौर पर टैलेंट खोज करें और वो 6 महीने तक अभियान चलाएंगे कि पूरे प्रदेश में जिस भी खेल में जो खिलाड़ी हमें मिलेगा उसको प्रोत्साहित करके इस देश के लिए खड़ा करने का काम करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयोग के अनुसार इसके लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। राज्य के बोधगया सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर एम्पोरियम और ग्रामीण मार्ट बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विकसित भारत जी रामजी समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा के दौरान बोधगया में एम्पोरियम निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 की सर्वे सूची की विशेष जांच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र वंचित लोगों को सूची में जोड़ने का भी निर्देश दिया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस वर्ष राज्य में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 5.5 लाख हेक्टेयर अधिक है। पटना के बामेती सभागार में रबी महाअभियान कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इस अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस वर्ष लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 9 लाख हेक्टेयर में मक्का, 5 लाख हेक्टेयर में दलहन, 4 लाख हेक्टेयर में तिलहन और 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू, सब्जी, मसाला और अन्य फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने किसानों से पराली यानी पुआल नहीं जलाने की अपील भी की है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक यह लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना PMDDKY के क्रियान्वयन के मामले में गया जिले ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि योजना की प्रथम वर्ष की समीक्षा में देश के 100 चयनित जिलों में गया का शीर्ष स्थान प्राप्त करना बिहार के लिए गर्व की बात है। योजना के अंतर्गत कृषि, सहकारिता, बैंकिंग, राजस्व, उद्योग और ग्रामीण विकास सहित 11 विभागों की 36 योजनाओं को संतृप्ति आधारित दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है।
4: जय चंद्र घंटा माता, ओम जय श्यामा गौरी।
1: मान्यता है कि मां के स्वरूप की पूजा करने से समस्त पाप और बाधाएं दूर होती हैं तथा सौम्यता और निर्भयता में वृद्धि होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पटना पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है।
5: पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन वगैरह को देखते हुए जो कार्रवाई करनी है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और पंडाल जो बना रहे हैं उनको भी इसी तहत लाइसेंस दिया जा रहा है। वहां पे लोगों के आने और जाने का क्लियर रखना ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। साथ ही जो बिजली विभाग के साथ समन्वय है वो स्थापित किया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती भी की जा रही है और रात्रि में वाहन चेकिंग भी कराया जा रहा है।
1: प्रदेश से मानसून पूरी तरह लौट चुका है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 10 दिनों से मानसून सुपौल के पास रुका हुआ था। 3 अक्टूबर को ही मानसून राज्य के 80% क्षेत्र से लौट चुका था। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस बार एक दशक में समय से पहले मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
6: अगले 24 घंटों में राज्य के अनेक स्थानों अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने तथा उसके बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 13 अक्टूबर को राज्य का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।
1: राज्य में विभिन्न विभागों में पदस्थापित 3 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने समस्तीपुर के सरायरंजन की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी को शिक्षकों के वेतन संबंधी और अन्य आवेदनों का सही ढंग से निष्पादन नहीं करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। वहीं कार्य में लापरवाही और कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने के मामले में दक्षिण बिहार बिजली कंपनी ने कनीय विद्युत अभियंता सुजीत कुमार को निलंबित कर दिया है। इधर नालंदा जिले के रहुई प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलतपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। पटना यातायात एसपी सागर कुमार ने ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। अब खबर खेल जगत से। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच का आज तीसरा दिन है। बिहार की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन से आगे खेल रही है। इस समय पीयूष सिंह 16 रन और अमोद यादव बिना कोई रन बनाए खेल रहे हैं। इससे पूर्व कल रिंकू सिंह और माधव कौशिक के शतक की बदौलत उत्तर प्रदेश ने पहली पारी में 540 रन बनाए। बिहार की ओर से सबसे सफल गेंदबाज अमोद यादव रहे, उन्होंने 4 विकेट प्राप्त किए। पटना के मनेर में संपन्न बिहार राज्य मिनी हैंडबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग का खिताब पटना ने नवादा को पराजित कर जीत लिया है। वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में सारण ने पटना को पराजित कर दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, राज्य में सैटेलाइट खोजेगा खनिज, हर साल मिलेगा 21,000 करोड़ का राजस्व। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, बीपीएससी 72वीं की 25 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित। दैनिक जागरण ने लिखा है, पीएमसीएच में 536 बेड बढ़े, एक साथ 2500 मरीजों का होगा उपचार। प्रभात खबर की सुर्खी है, अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और वुडफोर्ड को नोबेल। मंदी और महंगाई से निबटने की दिखाई राह। आज अखबार ने लिखा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन का रास्ता अब बंद। गृह मंत्रालय ने रामलीला मैदान, बुरारी ग्राउंड समेत 3 जगहों को नामित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत के निर्माण में बिहार को अग्रणी भागीदार बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। प्रदेश के बाढ़ पीड़ित किसानों के बीच कल फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि का वितरण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार समेत सभी राज्यों में पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में गया जिला ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। आइए सुनिए उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

हमारे सामीन हजरात को उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की जानिब से सुबह का आदाब व सलाम पेश है। शगुफ्ता हाजिर आज की अंजुमन के साथ। सामीन आइए आज की अंजुमन का आगाज करते हैं एक प्यारी सी गजल के साथ।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
10: नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
9: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, मां दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर करते।
10: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello. Hello. नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
5: जी जी नमस्ते।
6: कैसे मैडम जी?
5: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं?
5: जी मेरा ठीक है, आप बताइए।
6: नमस्कार मैडम
5: जी, आप नेहा बोल रही है ना भोरे से?
6: जी मैडम जी।
5: हाँ जी,
6: बहुत देर के बाद बात हुआ।
5: काफी दिनों बाद बात हुआ है आपसे।
6: बताना सुना दीजिए।
5: बिल्कुल,
6: महीना साल गुजर जाएंगे मेरे यार।
5: एक बार और,
6: महीना साल गुजर जाएगी मेरे यार।
5: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
6: गाना यहाँ को जितना रेडियो रिमझिम मार्ग का सुनता है अद्भुत सुनता है सबके साथ।
5: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: जी मैडम जी, गाना प्ले करने के लिए बहुत धन्यवाद।
5: जी जी

0: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
0: जी भारती जी, सर मास्टर धना से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैं भी ठीक हूँ।
0: ठीक हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: मौसम कैसा हो गया? ठंडा तो लग रहा है हल्का फुल्का।
1: जी जी, हल्का लग रहा है सुबह सुबह, और इस समय भी मौसम बढ़िया है।
0: जी जी, चलिए तो आज जुम्मा के दिन है तो यतीम मूवी का गाना सुनवा दीजिएगा।
1: और गाने की बोल बता दीजिए।

0: सबसे पहले भारती जी आपको भी और मनोरमा जी को भी और जितने रेडियो रंजन के सदस्य हैं सभी को सुनवाना चाहता हूँ और जितने भी श्रोता है सभी को
1: जी
0: जी हम लोग तो संद करते हैं आपके प्रोग्राम
1: जी
0: तो ताजिमा है तो 2 बजे के बाद गुरेंगे हम लोग 2:30 बजे के बाद कही
1: जी जी सुनिए
0: और रामा जी प्रसाद बहुत ज्यादा सुनते हैं धागे से
1: जी गाना प्ले करते हैं सुनते रहिए रेडियो रंजन
0: जी धन्यवाद।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, आरके मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
10: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
11: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो। हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
12: नमस्कार मैडम
13: जी। नमस्कार।
12: गीत सुनना है?
13: बिल्कुल, नाम बता दीजिएगा अपना।
12: रामायण गुप्ता पेनुला खास से।
13: जी जी, और कौन सा गीत सुनना है आपको?
12: तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दी कहूँ या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
13: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
12: हमारा शंकर भाई बारह श्री ऋषिया हरपुर के, और ये हम राष्ट्रजाम गावेला प्रेमी बासारा लोग सुनी।
13: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
12: नमस्कार मैडम।
13: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: हेलो,
1: हाँ नाम बता दीजिएगा अपना।
0: बोल रहा हूँ आदम अली।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: क्या हाल चाल? ठीक है, आप अपना बताइए।
1: जी जी, हम सब ठीक है जी। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
0: नया सॉन्ग है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है।
1: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: गाना सबको, पूरे लिसनर को।
1: जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
1: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्र वासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
1: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।
8: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
9: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
8: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर योग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
9: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 FM में।
13: हमसे
14: ठीक बनी रहुआ, बताई रहुआ कैसा? बिल्कुल चलता है, एकदम जोर शोर से चलता। और सब तो ठीक बा, सुना नहीं रहुआ बहुत भीड़ में बानी?
13: भीड़ में नहीं ठीक होने का रही थी हम परेशान रहनी है का बताई हम। हो सकता की शुक्रवार हमारे यही लेखा चल गई। गाना बताइए गाना गाते कि कोयला दिया है राजा गोरे चांद पे से चांद के ना काज के भाकार का ना नाम से सब बूटेदार साड़ी ये बाटे कलपना के आवाज में बहुत बेस्ट गाना गाए वे कोई वो नहीं थे।
14: अच्छा जी,
13: मैंने शुरुआती हूँ पर अभी बोल बाटे कोयला दिया है राजा गोरे चांद पे से चांद के ना काज के भाकार का ना नाम से।
14: जी जी,
13: बहुत बढ़िया काम है गाना गाते ये ना तो ऐसी नहीं थे समझ नहीं कई गाना में सबसे पहले रौजा के रानी में पड़ी हुई गानी जितना भी सुनी सौ रुपये से सुना दी जाए तो अभी लास्ट में चलता की और कॉल लगे थे भाई
14: और कुछ कॉल बा जी गाना रहा और प्ले करते नहीं
13: ठीक रहते
14: हैं।
13: नमस्कार
14: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी,
1: जी नमस्ते।
0: क्या हाल बा?
1: मेरा हाल ठीक है, आप बताइए करिश्मा जी कैसी हैं?
0: हाँ ठीक हो नहीं, खाना वाना हो गई बा?
1: जी हो गया है।
0: आज मनोरमा दीदी कहाँ बानी?
1: ओहो के बानी, अपना काम में बानी।
0: 11 बजे से लगावत लगावत अभी ना फोन लागल बाटे। अरे फोन करे ले हन
1: अभी कहाँ,
0: बस लगावत लहानी हाँ से लाग गई लाए।
1: अभी जस्ट जैसे कॉल कटल है वैसे रह रही हूँ।
0: और सब बोली?
1: और सब बढ़िया बा, रुआ बताई, रुआ ठीक बानी ना?
0: ठीक बानी सामने से सब आदमी।
1: जी जी तो
0: रुआ दुआ से?
1: अच्छा, भगवान जी के दुआ से?
0: हाँ मान ली तो रुआ भगवान है बनी।
1: अरे ऐसा कोनो बात नहीं है, भगवान जी के दर्जा के ले सकता।
0: गीत सुनने के बारे में हमारा
1: बिल्कुल बता दी, कौन सा
0: गा के बताई कि ना?
1: बिल्कुल गा के बताई, बहुत अच्छा गा रहे।
0: मनहर जाला मनवा के ममता, मनहर जाला मनवा के ममता।

0: यही सुनूंगा।
1: जी, और गाना क्यों के सुनवा हूँ के बाद।
0: हाँ, सबसे पहले रघुआ के और मनोरमा दीदी के और सोनी दीदी के और दिव्या दीदी के और रानी दीदी के, उत्तम सोनी जी के, रेशमा जी के, काजल जी के, राघव जी के और बिट्टू प्रजापति के और गणेश कुमार के और मनीष भैया सनिहान, जितना के सुनने वाले बाइंग सब।
1: जी, तो और गाना प्ले करता नहीं।
0: ठीक बा,
1: सुनत रही रेडियो रमजन 90.4 FM।
0: बाय
1: बाय।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: प्रसाद क्लिनिक,
16: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
15: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
16: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
8: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। आवाज थोड़ा बहुत स्लो आवता, कट कट के आवता।
19: हेलो,
18: हाँ बोलिए,
19: आप सुनाते हैं?
18: हाँ हाँ आप सुनाते
19: हैं?
18: ना ना आज हमारे बाबू
19: तो गाना सुना दिए मेरा।
18: बिल्कुल बता दी, कौन सा?
19: और
18: गाना के बोल
19: भाई संभव
18: गाना कैसे सुना है खुदा?
19: कैसे कहते हैं मनोरंजन सुना खुदा
18: बिल्कुल ना सुनाई, कोनो बात नहीं सर। बिल्कुल मत सुनाई।
19: मनोरमा जी का सुनाएंगे?
18: हाँ बिल्कुल सुनवाए।
19: रानी जी का सुनाए के बाद?
18: अच्छा जी,
19: वो झगड़ा कर देंगे
18: कर लो हमारा से।
19: झगड़ा करे वाला काम कर झगड़ा करू
18: में। अब गाना नहीं की गावते में कौन झगड़ा करे वाला बात
20: ना दे मुई में।
18: अच्छा ना यहाँ के ना अच्छा लगे हम ना गुनगुनाए।
19: अच्छा
18: सोमवार के बाजी जाये गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो रिमशन 90.4 एफएम।

0: ना तो जाड़ा निकल जाए।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
1: सलाम भाभी मैम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसन बानी?
2: हम तो ठीक बानी, रोवा बताए रोवा कैसन बानी?
1: हम बहुत अच्छा बानी और बहुत खुश बानी। आज मेहनत सफल भइल।
2: अच्छा, फर्स्ट कॉल लागे?
1: हाँ, बहुत कम लोग के फर्स्ट कॉल लागे ला मैम। मतलब सोचिए जे लगावे ला। और हमार फेवरेट आरजे भारती मैम के नाश्ता बनी हो गए?
2: जी हमार तो हो गए, बताए और हो गए।
1: जी मैम अभी तो भइल टाइम देते हुए फसल लगा देनी।
2: चलिए बढ़िया, अभी तो मतलब घर पे बानी?
1: जी मैम घर पे बानी, छुट्टी मनाओ तनी।
2: चलिए बढ़िया मनाओ
1: मैम, कभी कभी छुट्टी ले लेके चाहे मैम, लेकिन घर में रह के कब को छुट्टी आगे मजा।
2: ठीक बात
1: है जी मैम। और जैसे कि अभी भुट्टा के दिन रहा, बहुत अच्छा लगा ला। लेकिन मैम एक बात समझाना के मतलब रिकॉर्ड में काटे मत।
2: बिल्कुल ना काटे।
1: रानी जी बानी, उनका वजह से हम मतलब भोजपुरी बोलता नहीं, तो हमें बहुत सुकून मिलता। मतलब उनके देखा देखी पूरी बोलने को स्टार्ट करनी, हम बहुत सुकून मिलता। मतलब तो हमें भोजपुरी में बात करके आते, उनका के धन्यवाद बोले।
2: बिल्कुल,
1: काहे की मतलब सुकून जन बान भोजपुरी में बात करके, हिंदी में ना आवेला समझ में आ गए। लेकिन गाना के फरमाइश हिंदी करे?
2: बिल्कुल बता दी।
1: काहे की ज्यादा हम भोजपुरी गाना ना सुने, ज्यादा हिंदी सुने, तो हमरा के एगो गाना सुनाई। गाना के नाम बा मनवा लागे।
2: जी जी,
1: हम लोग के गाना अच्छा गाना बा,
2: काफी बेहतरीन गाना बा,
1: देखे बढ़िया अंदाज में जुड़े के बा सोमवार के कोशिश रही। लेकिन मनवा मैम खिसिया ना, लेकिन हमारे फेवरेट आरजे भारती मैम है।
2: ऐसा कोनो बात नहीं है, गुस्सा ना आवेला।
1: जी मैम, तो लेकिन मैम हम अपना के बताते नहीं, हम बहुत पुरान है सुनने वाला। जब से हमारा पास फोन हुआ तब से छोटा वाला ऐसे सुनत नहीं है पहले, अब ऐप के द्वारा सुने नहीं।
2: चलिए बढ़िया बाबा, ऐप के द्वारा साफ सुनाई देला ना?
1: जी मैम बहुत साफ सुनाई देला। जी मैम, तो गाना भुला न ये वाला बजाय
2: गाना क्यों के सुनेबो करे?
1: गाना के सुना मरुआ मैम के, रुआ के, सभी आरजे के, सभी रेडियो दोस्त के खाते तो नाम लेम तो बहुत लोग बा, वैसे ऑल बोल देता नहीं।
2: जी जी, तो गाना प्ले करता नहीं?
1: ओके, मैं एडवांस धन्यवाद बोलिए देता नहीं।
2: रेडियो कॉल कहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बाय
2: बाय।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
8: जी। बाजी, अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम,
8: कैसे बने?
9: हम तो ठीक बने, रुआ बताए रुआ कैसन बानी?
8: अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक बने। तो नाश्ता वास्ता कहीं है कि ना?
9: जी जी, हमारे तो नाश्ता हो गई बा।
8: अरे बाप रे, हम थक चुकल बानी, बहुत बार कॉल कैले बानी, बहुत बार।
9: अच्छा जी, अपन नाम बता देना हमके।
8: हमारा नाम फरीदा खातून, बांगरा से बोलता ने।
9: अच्छा जी,
8: माने जाना था ना पेपर पूछे ने?
9: ना ना, ऐसा कोनो बात नहीं। खैर, जैसे कि मोबाइल नंबर के माध्यम से जुड़े नहीं सुनता, नंबर थोड़ा पहचान में।
8: जी जी जी जी बाजी, लेकिन बहुत लाजवाब तुम्हें बोला था, बहुत अच्छा लगा था बाजी, बहुत बढ़िया।
9: अच्छा जी,
8: आई रेंजिंग जो चला तार चलावता नहीं, बहुत अच्छा लगा था। इतना ना जानता नहीं, मन करता की रोज हम बतियाते रहे और उसको हमें तो सुनते रहे।
9: अच्छा, इतना पसंद आओ
8: एकदम, इतना ना बोली और इतना प्यारी सी बोली लगा तो क्या बताए सो हमने। कुछ लाइन हम बोल चाहते नहीं।
9: बिल्कुल बोल दी।
8: बोलिए, बुरा ना माने?
9: ना ना, बिल्कुल ना माने।
8: ना बोलते ना, तुम पास नहीं हो फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है, तुम पास नहीं हो फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है, तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो, पर हमें रोज याद तुम्हारी आती है, हमें रोज याद तुम्हारी आती है,
9: खुद को शुक्रिया है
8: जी। खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरी खातिर खुद को बदनाम कर दिया। और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, मेरा पास तो एक दिल था वो भी तेरे नाम कर दिया, वो भी तेरे नाम कर दिया।
9: आए आए, क्या बात है।
8: थैंक यू, अच्छा लगा।
9: जी बहुत अच्छा लगा।
8: जी जी जी, तो ठीक बने ना लोग?
9: हम ठीक बने।
8: तो ये रिकॉर्ड होते ना?
9: हाँ बिल्कुल।
8: तो हम लगा गाना सुना दी?
9: बिल्कुल बता दी।
8: गाना भोजपुरी बात गा सकते ना?
9: हाँ हाँ बिल्कुल बाजी।
8: हम मेरे

0: भगवान बड़े पुरुषोत्तम से तुहरा के बहनों वाले
1: कितना अच्छा तो गाओ था।
0: और वो तो कितना अच्छा तो बोला था नहीं। एक बार गा
1: दे क्या? लेकिन गाना ये ना सुने, एक बार हुआ।
0: हाँ स्पेशली हमने रोमियो को सुना, चाह रहा नाम बताया मैंने, सुना लोग हाँ गाओ था हिंदी सॉन्ग गाते हैं।
1: बिल्कुल।

0: अच्छा लगा था सुन के रुआ मुझसे। बिल्कुल एकदम, एक दिन रह के तो बात हो ही जाए।
1: सबसे पहले तो रुआ थे
0: जी,
1: और कमराम जी बने, और आभो जी बने, और सजिया जी बने, और अंजनी जी बने, रजनी जी बने, आपसा जी बने, रामदेव जी बने, संदीप जी बने, सगीर आलम जी, संतोष जी बने, नसीम जी बने, और नर्मा दीदी बानी, और सुन भी बानी
0: जी।
1: ये गाना पूरा सुना था, कौन बाजी थी कहिए बाजी बाजी बाजी हम कौन सका था सुन बा
0: बिल्कुल।
1: हाँ जो बारह बजे जो आसपास मस्ती में रही ना, चलो ठीक है
0: ओके। तो गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो रमजिम 90.4 FM।
1: जी सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम।

0: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: मैम गाना सुनना था।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: हेलो
0: मैम, गाना सुनना था।
1: बिल्कुल, नाम बता देना।
0: नाम गोविंदा कुमार, जलंधर पंजाब से। जी मैं तो पहली बार फोन लगाया हूँ मैडम जी।
1: नहीं नहीं, इसमें
0: जी
1: योर वॉइस के शो में जुड़ते हैं ना आप?
0: जी,
1: इसलिए तो सुने, कहीं सुना सुना लग रहा है।
0: जी मैडम जी,
1: तो आज हेलो माय चॉइस में फर्स्ट बार जुड़े हैं
0: जी।
1: ओके, कैसे हैं आप?
0: मैं तो ठीक हूँ जी।
1: चलिए बढ़िया है। और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: मुझे सुनना है वो तिरंगा फिल्म में गाना।
1: गाने की बोल बता दीजिएगा।
0: वही जो देशभक्ति गाना है जो।
1: अच्छा, तिरंगा मूवी का जो देशभक्ति गीत है वही ना?
0: जी, जो नाना पाटेकर का जो है।
1: हाँ है
0: जी, वही।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: सबसे पहले आपको और विजय सर को और अजय सर को और सनु सर को और विकास सर को और रेडियो रेंजिंग सुनने वाले सभी से बता रहे थे।
1: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
0: ओके मैडम, थैंक यू।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: शक्ति की उपासना, आस्था की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लेकर आया है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
7: इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के जदयू जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार पटेल जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर परिवार खुशहाल रहे और गोपालगंज में आपसी प्रेम, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।
6: विजयादशमी का ये पावन पर्व हम सभी को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री प्रमोद कुमार पटेल जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
10: Now pick your phone up. Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में।
10: हेलो हेलो हेलो
11: आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो मैम, नमस्ते।
12: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
13: जी धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
12: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
13: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं रेडियो रंजन का इंतजार करते हुए। मैम फोन लगा रहे थे, फोन भी लग गया मैम।
12: तो आप अपने गाने की फरमाइश बता दीजिए।
13: जी गाने के बोल है, जब जब प्यार में पहरा हुआ, प्यारा और गहरा हुआ है। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रंजन दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
12: ओके जी, तो आपका गाना हम प्ले करते हैं।
13: जी धन्यवाद।
12: 91.4 FM।

0: हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: कैसे हैं मैम?
0: जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। सब नाश्ता हो गया आपका?
0: जी, नाश्ता हो गया। अपना नाम मेंशन कर दीजिए।
1: जी, बता रही हूँ, हम फरीदा खातून बांगड़ा से बोल रही हूँ।
0: जी,
1: बताइए, और सब ठीक है?
0: हाँ,
1: तो गाना बज जाएगा?
0: बिल्कुल बजेगा, बता दीजिए कौन सा।
1: हिंदी हिंदी की भोजपुरी?
0: आप कोई भी गाने की फरमाइश कर सकती हैं, बस गाना अच्छा होना चाहिए।
1: जी, आपने नाम बता दीजिए हमको भी।
0: मेरा नाम भाभी है।
1: थैंक यू मैम। गाना का बोल है हमारा कि भोजपुरी प्यारी करते हैं तुमको सनम, भोजपुरी प्यारी करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यारी करते हैं तुमको सनम। ये गाना है ना?
0: जी, आप तो बहुत अच्छा गा ले रही हैं।
1: थैंक यू। कहाँ गाना गाते हैं?
0: नहीं, इतना तो अच्छा गा के सुनाई अभी।
1: मैंने मन खुश हो गया ना सुन
0: जी
1: तो।
0: जी काफी बढ़िया लगा सुन के।
1: थैंक यू मैम, तहे दिल से। तो सुनाना चाहते हैं सबसे पहले आपको,
0: जी
1: और रजनी जी है, अंजलि जी है, और रामदेव जी है, नसीम जी है, और संदीप जी है, और विमलेश जी है, और आशा जी है, और जितना मतलब रिमझिम जितना दोस्त हमारे सुन रहे हैं लोग, उन सबके लिए है। लेकिन बजेगा ना?
0: जी कल बजेगा शाम
1: अच्छा, सुबह में कि शाम को?
0: को, और सुबह सुबह में भी रिपीट होता है, शाम को तो मतलब शुरू हो जाता है।
1: जी, चलिए तो ठीक है। तो
0: ओके,
1: सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम रेडियो।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99349-51551 पे।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करो तनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
11: जब फोन टिंग टिंग बजती है तो कहते हैं
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में।
11: hello, hello.
3: आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
14: नमस्ते मैडम
13: जी। नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
14: साकिर नाम से बोल रहे हैं, थारो के लग से।
13: अच्छा अच्छा,
14: बोलिए। खाना खा लिए हैं मैडम?
13: जी जी, आपका क्या है?
14: हाँ, हम भी खा लिए हैं।
13: तो कौन सा गाना सुनना है आज? कौन से गाने की फरमाइश से बता दीजिए।
14: चावन मजाना दे, एक ही गाना सुना है।
13: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
14: सबसे पहले आपको।
13: जी जी,
14: और जितना सुन रहे आने होंगे

0: हेलो,
1: हेलो, सलाम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी, हमारे भारती मैम को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी,
1: बहुत दिनों इंतजार करते हुए और आज बात भी हो गई। कभी कभी आप गायब हो जाते हैं ना मैम?
0: नहीं, गायब नहीं है, हम भी यहीं पे हैं।
1: हमको लगा हम लोग से आप गुस्सा हो गए हैं कि बस रिकॉर्ड कर रही है।
0: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो जो काम मिलता है वो करते हैं।
1: वो तो बात सही है मैम। और मैम सब बताओ, खाना पीना हो गया?
0: हाँ हाँ, खाना पीना हो गया। बताए और हो गए?
1: हाँ हो गया, कुछ भुला जाता नहीं कभी कभी की भोजपुरी में बोले कर।
0: ना ना, कोनो बात ना, भोजपुरी में बोले, हिंदी में, दोनों में बात हो सकता।
1: क्योंकि बहुत दोस्त लोग सुने ला लो, रिकॉर्ड कर ला लो, तो सुन ले पानी भोजपुरी में अच्छा लगे ला। जैसे कि राजी जी को जैसे हम उसी गई बानी की भोजपुरी में बोली, अच्छा लगा था बहुत ज्यादा शो में।
0: अच्छा,
1: और उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त के अच्छा लगी। और मैम तो बहुत लेट हो गए
0: जी, थोड़ा सा।

0: कि अभी ना लगी तब तो लास्ट टाइम लगाम एक ही बार।
1: चलिए कोनो बात ना,
0: आज उतना मेहनत ना करनी है मैंने 22-23 को कॉल लगाने तो लग गई
1: 22-23 को।
0: हाँ, और वो दिन एक दिन तो 300 पार हो गए तब लागल।
1: बता दी कौन सा?
0: परवाना मूवी से गाना सुनाई।
1: बता दी
0: और गाना के बोल बा प्यार तो होता है प्यार, ये वाला गाना बा।
1: और गाना क्यों के सुनाऊंगी बा?
0: गाना मैम अभी तक गाना सुना वाला सभी रेडियो सुनी अभी सुना था और टाइम मिला ना फिर भी कहीं जाते हुए मतलब सफर में ही हम कॉल कर देनी और गाना फरमाइश करे खातिर। रेडियो से इतना लगाव बन मैम की क्या करी मतलब कहीं भी रहनी तो हाथ ऑटोमेटिक जाला। अब मैं समझ सकता नहीं कि इस शोर से कितना लगाव है।
1: बात तो बिल्कुल सही बात, लगाव तभी तो।
0: जी मैम, हमारा के बहुत लोग गांव के कहला कि रेडियो में का बाटल के जमाना में हम कहे ना जन एक नशा बतन अलगे बा। और कहला लोग की यूट्यूब से मिल जाये सॉन्ग सुन ला, हम कहे ना अमेजन सुनने के बात बतन अलग बात बा। और मैम रघु बात की मानता नहीं की ना?
1: बिल्कुल मानता नहीं।
0: काहे की रहुआ तो आरजी हवे रहुआ तो और माने। और गाना के प्ले कर दे मैम तो आज तो नहीं बाजी मन चली आज।
1: हाँ हाँ कल बाजी रहो।
0: चली मैम तो इंतजार में रही रहुआ के अंदाज में 5-6 दिन हो गए सुन ले। चलिए मैम तो गाना प्ले करी एडवांस धन्यवाद।
1: ओके, और गाना प्ले कर जानी सुनत रहे रेडियो रंजन 90.4
0: एफएम। ओके मैम, बाय
1: बाय।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले चलेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करे 8570-32042 पे।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
8: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
11: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
12: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,
9: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका 91.4 FM में।
15: मैं तो कैसी हूँ?
14: जी जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
15: क्या हो रहा है अभी?
14: काम हो रहा है। काम कैसे? अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है। तो इसी के साथ बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है।
15: अरिजीत सिंह का कलंक।
14: कौन सा?
15: कलंक। कलंक मूवी नहीं है अरिजीत?
14: हाँ हाँ
15: है। कलंक कलंक जाके बताऊँ क्या?
14: बिल्कुल बता दीजिए।
15: लेकिन आवाज उससे तो अच्छा नहीं जा रहा है।
14: इतनी खूबसूरत तो आवाज आ रही है।
15: उसे दो लाइन जाके बता रही
14: हूँ। बिल्कुल

0: जी, काफी बहुत खूबसूरत गा रही हैं और बोल रही हैं कि आवाज अच्छी नहीं आ रही है।
1: थैंक यू। आवाज उठा था नहीं नजर आ रहा है।
0: नहीं, फिर भी बहुत अच्छा आ रहा है।
1: वो
0: तो अभी अब अपने काम में लगी हुई है और गाना किसी को सुनवाएंगे भी। जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्ते बालवीर सुंदरपुर।
0: जी जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: बहुत ही गाना अच्छे सारे की आवाज सुना दिया है, थारे वाला।
0: गाने की बोल बता दीजिएगा।
1: थारे वाला कोई भी खेसारी की आवाज में।
0: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: अमन अशी सॉन्ग लव अद्वित
0: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439-45-651 या 9797-06-575।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
10: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: ए बाबा, घर भर के लोग बीमार बा, कहाँ जाएं?
13: दगा है इतना परेशान बाड़ू, चल जा मिर्जापुर मोड़ डॉक्टर बाबा के लगे।
14: जी हाँ, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, पागलपन, बांझपन, स्त्री रोग, शिशु रोग, गठिया, बवासीर, भखंदर, आँख, कान, नाक और दांतों के सफल इलाज के लिए आप भी मिर्जापुर मोड़ पर मिलिए डॉक्टर वशिष्ठ बाबा से।
15: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ समय 9:25 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-1665। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश भी आपको सुनाई जा सके। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपना भी कार्यक्रम की शुरुआत करें मैसेज टाइप करने का। और मेरे पास पहला मैसेज अभी पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले मनीषा फ्रॉम अमवा मौजम से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, आज के दिन न्यूज आप लोग नहीं चलाए। बिल्कुल न्यूज तो चला लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ऐप पर प्रसारण हमारा रुक गया था। फिलहाल अभी प्रसारण स्टार्ट हो चुका है और आप जो भी अभी के कार्यक्रम चल रहे हैं रेडियो पे वो ऐप के माध्यम से आप कहीं भी सुन सकते हैं। यहाँ पे कुछ और मैसेज पहुँचे हुए। हेलो सर नमस्ते, शौंग खाली दिल नहीं जान भी मंगदा। इस मैसेज को करती हैं निशा बले सुकुलवा से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर जी मुझे भी शौंग सुनना है जब पहली बार दिल मेरा धड़का। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और इस मैसेज को करती हैं नीसू फ्रॉम झिरवा से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय मैं कमलेश जी विलेज सव्या फील्ड गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में कमलेश जी, गाने को फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सोनू भैया नमस्ते, अमली नौसाद दरभंगा बाजीतपुर से, और मुझे एक गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पहले फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हम सभी पहले फरमाइश करने वाली यहाँ पे मनीषा फ्रॉम अमवा मौजम से है, तो इन्हीं के गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने। हम सभी रेडियो MCM 90.4 FM पे गाने का बोल देती हैं। रेडियो MCM 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कुछ से ऐसे गाने के नाम बताए गए हैं जिसके वजह से कुछ से हमें मिल नहीं रहा है, तो आपकी गाने के फरमाइश को हम नहीं पूरा कर सकते। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करती हैं निशा बले सुकुलवा कला से। और गाने का बोल देती हैं खाली दिल नहीं जान भी मांगता, इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो MCM 90.4 FM पे।

कभी प्यारा संग रेडियो रमसेम 94 FM पे सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें, 90s के गाने का फरमाइश करें और कौन से गाने सुनने हैं उसका नाम ठीक से बताएं ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि अभी जैसे इस गाने के पहले एक हमारे श्रोता मनीषा जी के तरफ से गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ था और नाम ऐसा बताया गया था कि उस नाम से और उस तरह के गाने ही नहीं मिल रहे थे और हमें लगता है कि उस तरह के गाने ही नहीं बने हुए हैं जैसे उन्होंने बताई, तो गाने को चेंज करना पड़ा। फिर अगले श्रोता की फरमाइश हम प्ले किए तो ऐसी परिस्थिति ना आए, आप डायरेक्ट उस गाने के फरमाइश करें जो आपको हम बेझिझक सुना सके और हमें मिल सके। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। इस गाने की फरमाइश करती है निशु फ्रॉम झिरवा से और गाने का बोल देती हैं पहली बार दिल मेरा धड़का, डेडिकेट बाई आपको एंड ऑल लिस्नर को। तो चलिए सुनते हैं हम सभी रेडियो रमझिम 94 FM पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं आप सब रेडियो रेम 94.4 एफएम पे। कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। समीर जी के हाल चाल है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बुलेट चौधरी बढ़ेरिया थाना क्षेत्र 3 फेड़िया से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी मंगल

शुभकामनाएं सभी यूनिट और हमारे प्रिय श्रोताओं को और खास सोनू बाबू को। देवी माता खुश रखे, मस्त रखे, दीर्घायु रखे, ताकि हम सभी श्रोताओं का दिल से मनोरंजन कराते रहें। जय माता दी। वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे में से पहुँचा हुआ है, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया शुक्रिया। मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाने के लिए MD 97 दरभंगा भजीतपुर से मैसेज करते हैं, तो बिल्कुल आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए 97 जी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज करते हैं सन्नी पटेल जी दलिया से, और कहते हैं कि बहुत दिन के बाद कार्यक्रम से जुड़ चुका हूँ और सभी आरजे एंड सभी दोस्तों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और संग जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटिया, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और पवन सिंह की आवाज़ में ही छठ गीत की फरमाइश भी हमारे

बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है

0: भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
6: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
6: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
6: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
6: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 94.4 FM पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे कई मैसेज हमारे पास दिखाई दे रहे हैं और लिखा गया है कि मेरा नहीं बजेगा तो आज तो नहीं बज पाएगा। और जो भी मैसेज हमारे पास अभी जो पहुँच रहे हैं जो अभी गाने के फरमाइश के साथ, उस मैसेज को हम गाने के फरमाइश को हम नहीं पूरा कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास अब उतना समय नहीं बचा हुआ है। आज बहुत सारे मैसेज पहले ही पहुंच चुके हैं, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग छठ पूजा का। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है गुड नाइट और आपको भी धन्यवाद रेडियो रमझिम सुनने के लिए। और मैसेज करती हैं निशा शुक्लवाशा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सन्नी पटेल, मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपके ही सॉन्ग प्ले हुआ था और आप सुन नहीं पाए शायद, तो आप जब भी गाने को फरमाइश कर रहे हैं तो कार्यक्रम को सुनते रहें, कहीं ना कहीं आपके गाने हम प्ले कर ही देंगे और नहीं होगा तो अगले दिन ज़रूर ही होगा यदि आपका मैसेज अपडेट होगा तो। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा गाना नहीं बजेगा का, बिल्कुल बजेगा, आपके गाने बजेंगे और हमारे पास जितना समय है उतना में पूरा करने का कोशिश रहता है कि अधिक से अधिक गाने हम बजा दें और आप सभी को सुना दें। इस मैसेज को करते हैं अजय कुमार मिश्रा जी गाराम गणेश स्थान माझा से और गाने का नाम दिए हुए हैं मोहब्बते मूवी से, हम तेरे दीवाने हम आशिक मतवाले। बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश अभी प्ले होगी और कुछ मैसेज है मैसेज देख ले। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई जय राम जी के, मैं ब्रिज बिहारी पांडे राजेंद्र नगर गोपालगंज से और मुझे गाना सुनना है, गाने का बोल है चौदहवीं का चांद फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनाना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी सुपर शॉन्ग, काफ़ी पहले मैसेज अपडेट किए थे दिलीप जी, तो चलिए हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमल के संग रेडियो रेम झिम 90.4 FM पे सुन रहे हैं हम सब। रेडियो रेम झिम पे कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि सुपर संग, और इससे पहले लिखे हुए कि सोना भाई नमस्कार, जय माता की, कैसे हैं आप? और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल रोहित जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने की फरमाइश किए हुए हमारे श्रोता एक हैं, जिनका मैसेज पहुँचा हुआ है। बुलेट चौधरी जी बढ़रिया से जुड़े हुए हैं, और गाने का फरमाइश किए हुए हैं कि नीमिया के गछिया में कौन गुनवा पौलू ए भवानी मैया, भक्ति देवी गीत की फरमाइश किए हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं, इनके पसंद के गाने हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं।

0: कभी प्यारा संग रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं हम सब। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सभी दोस्तों को और आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और मैसेज करते हैं दिलीप जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है काफ़ी लंबा सा, और काफ़ी लंबा सा तो हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं। और इस मैसेज को किए हुए हैं और लिखे हुए हैं कि सोमवार की हसीन रात दोनों के नाम, दिन भर की भागदौड़ अब थम जाए, चांद की रोशनी हर चेहरे पर मुस्कान लाए, सोनू सर के शो में दोस्ती की महफिल सजे, रेडियो रिमझिम के संग हर दिल खुशी से मिले। इस मैसेज को करते हैं राघव जी आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम फटाफट प्ले करेंगे। और इस गाने की फरमाइश किए हुए हैं ब्रिज बिहारी पांडे जी, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है 14वीं की चांद का टाइटल ट्रैक। तो सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।
1: 14वीं का चांद हो।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतानी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
8: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
9: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
8: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
9: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277166596। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आप सभी को हमारी तरफ से एक बार फिर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ, जब तक हमारे श्रोतागण हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में गाना है और मूवी है लहू के दो रंग और गाने की बोल है हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। तो गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी आप लोग सुन रहे थे हमारी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर जुड़ चुके हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, और क्या हाल है मैम? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैम का, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय आरजे नमस्कार, और लिख रहे हैं कि वाओ सुपर एनर्जेटिक सॉन्ग, और हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। और मैसेज करने वाले हैं फिरोज भागलपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अस्सलामुअलैकुम भारती जी, नौशाद अली मोतिहारी जिला से, और मैसेज को शामिल कर दीजिएगा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं विराट यादव गोपालगंज से, और जय माता दी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मैडम जी, और आपको और रेडियो रूम जिम सुनने वाले सभी को, और मुझे भी गाना सुनना है, लिंक भेज रहा हूँ, बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय डियर भारती जी, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और मेरी भी मैं भी जुड़ गया हूँ, और सुपर सॉन्ग, और जितेंद्र बरौली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आरजे भारती और रेडियो रूनियन की पूरी टीम को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई, माता रानी की कृपा यूँ ही बनी रहे, जय माता दी, और सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी, और आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम बा गोर छूके भारती जी और भारती मैडम, और हम हूँ आगलवानी हमरू हाजिरी लगा दी। तो बहुत बहुत स्वागत है, और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दी गुड आफ्टरनून मनोरमा दी और भारती दी, मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, और का हाल बा भारती दी मनोरमा दी, और मैं भी जुड़ गई हूँ, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और मेरी तरफ से सबको नमस्ते बोलिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी हम लोग का हाल चाल ठीक है, आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय, और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्जित सिंह, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते गुड आफ्टरनून मैम, मैं भी आ गया हूँ, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, और जी आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, और जावेद धनबाद से जुड़े हुए हैं, और गाने की बोल पहुँची हुई है, और गाने की बोल है भीगी भीगी भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं बिना देरी किए, और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमजिम के कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 एफएम। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं रमेश, और जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रही हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, ठीक है ना मैम। और फरीदा खातून बंगरा से और जुड़ चुकी हैं, और हमारा भी हाजिर लगा दीजिएगा। और लिख रही हैं कि अर्ज किया है, खुदा ने चमकता हुआ सितारा दिया है, टूटने के बाद एक सहारा दिया है, किस्मत भी क्या खूबसूरत है मेरी, ऊपर वाले ने मुझे दोस्त मुझसे भी प्यारा दिया है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरे गाने का टाइम हुआ है कि नहीं मैम, हम अहमद अली सारे अवार्ड नंबर 1 से, और गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को बोल दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी आपके गाने की फरमाइश को मैं गुरुवार को प्ले की थी, इसलिए आपके गाने की फरमाइश को फिर गुरुवार को ही प्ले करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल चाल है जी। और लिख रहे हैं कि हर बात में आंसू बहाया नहीं करते, दिल की बात हर किसी को बताया नहीं करते, लोग मुट्ठी में नमक लेके घूमते हैं, दिल के जख्म हर किसी को दिखाया नहीं करते। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। जय किशोर जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते भारती दीदी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम शिव शंकर टेलर पटना बिहार से, और भारती मैम नमस्ते, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैडम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है, और जी आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और गुड आफ्टरनून आपको और साथ में सभी दोस्तों को, और गुड आफ्टरनून, हम श्री राम सासाराम टू दिल्ली से जुड़े हैं, और मेरी भी फरमाइश है, बजा दीजिएगा, धन्यवाद। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई, अंकुश राजा का गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है भुलैली कबूतरो। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में।

0: त कुछ बताइबे कैसन रही।
1: हमार मेहरारू, हमार मेहरारू तो लाखों छोड़ी करोड़ों में एक ही यार।
0: चुप, अपने आप के बुझेला कि हम राजा हैं, जाहो ने भीड़ में खोजा
2: खोज

0: पाणी जी तन माइक लिए तो
1: हेलो हेलो जेड के मेहरारू के ढूंढ के लाई ओके 5000 रुपया इनाम दिया जाएगा।
2: नहीं यार उतना ज्यादा हो गई
0: तल्ले ते ही बोल।
3: हेलो हेलो हेलो बाबू जी हमरे में खेल ली उन्हें 4000 रुपया दिया जाएगा
4: इनाम
3: इनाम दिया।

0: अच्छा ही बताओ, पढ़ल लिखल ही कि तोरे जैसन बउराहिन ही?
1: तू जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पढ़ल नहीं?
2: हमार मेहरारू भागल ना हो, तू जी हमके समझो तड़ो।
1: हम संतोष पागल नहीं।
0: अच्छा जाए देखी सीओ जान, और केहू

0: पापा, ओ पापा, पापा।
1: अरे देख तो है तोरा लेके हका रे।
2: हो ए सरकारी तो हमरे हो। अरे तोर माई रे
3: अड़ी कहा
2: खोजत रहनी हो।

0: चल घरे चल।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
2: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
1: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर योग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
2: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
5: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:38 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दूं कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और यहां हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं भारती जी गाना सुनाने के लिए शुक्रिया आपको। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग श्री राम जी का धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे हैं नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम भारती मैम एंड मनोरमा मैम, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहल्ली पंजाब से, और आज मेरी भी फरमाइश है, लिंक भेज रहा हूँ और डेडिकेट करना चाहते हैं ऑल फ्रेंड्स को। और लिख रहे हैं कि भाग्यशाली का मतलब जिसके भाग्य में साली हो, और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है। और इसी के साथ यहां मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, अभिभावक ध्यान दे, अगर आपका बेटा दुर्गा पूजा में अचानक आगे आकर प्रसाद बांटने लगे तो समझ लो होने वाली बहू आरती में आई हुई है। क्या बात है, और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैम मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और हजरा सूरत से जुड़ी हुई हैं और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रही हैं कि अगर सामने वाले नाग नागिन बन के 10 रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है सपेरा बन के नचा दो साले को। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। तो जी बिल्कुल आपकी भी बारी आएगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर रोशन टेलर ग्राम धनाव से और आपका कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ। और क्या हाल चाल है मैडम जी? तो मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं हेलो भारती जी नमस्कार राधे राधे, और मुझको एक गाना सुना दीजिएगा। और शिवांश चौधरी बस्त्रा राजा लालगंज मिर्जापुर यूपी 63 से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। और गाने की बोल है तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बनी बन के रहेगी कोई कहानी, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की

0: सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
0: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
0: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और आप सभी को बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी अपने फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नाम गौतम फ्रॉम दरभंगा बिहार से जुड़ा हूँ और पहली बार मैसेज किए हैं, गाना सुनना चाहते हैं और गाना सुन रहे हैं लाइब्रेरी में। तो बहुत बहुत स्वागत है और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आई होप एवरी वन रियली गुड और स्पेशल थैंक्स फॉर च्वाइस दिस सॉन्ग, भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम और थैंक्स अगैन। और लिख रहे हैं कि सोनू सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून वंस अगैन ऑल ऑफ यू, व्हाट इज स्वीट वॉइस सालसा अगहा जी और मोहम्मद अजीत साहब, एंड थैंक यू सो मच रिक्वेस्ट दिस सॉन्ग और तेरी मोहब्बत मेरी जवानी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बहुत अच्छा और मैम मैं अजीत और असलम मोहम्मद अजीज और सलमा आपको आवाज़ में और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सॉन्ग और पसंद करता को धन्यवाद है। और लिख रहे हैं कि उमा शंकर भैया और उत्तम सोनी भैया और सन्यासी रंजन भैया को दिल से नमस्कार करता हूँ, फिरोज़ शेख जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नवरात्रि की शुभकामनाएँ और कोयल मैम जी हमारे ओर से, बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इज़र राज, पप्पू ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है। और जी मेरा नाम भारती है और कोयल नहीं है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना जल्दी बजा दीजिए, भूल गए हैं क्या, तो आपके गाने की फरमाइश नहीं भूले हैं और सबके गाने की फरमाइश को पूरा कर रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मेरे प्रिय आरजे भारती जी और मैं भी आ गया हूँ, मेरे लिए जगह खाली है, नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है और जी सबके लिए यहाँ जगह खाली है और आपके लिए भी है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं शिवांश चौधरी जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहती हैं करिश्मा जी और इनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या इनकी फरमाइश।
3: हेलो दीदी सब के गोरछे के प्रणाम बा, हम करिश्मा बोलते नी पिपरा नारायण से, का हाल चल बा, खाना वाना हो गल बा, मनोरमा दीदी के का हाल बा, रानी जी के पूछ के बताई, हमारा गीत सुने के बा, एगो बुलेट पजी जा, बुलेट पजी जा ले चल घुमावे, बुलेट पजी जा, ये सुने के बा, डिटिकेट सबसे पहले रघुआ के रही और मनोरमा दीदी के रही और जितना सुनता है लो सब क्यों के रही, स्पेशल में गणेश भैया के रही और रानी दीदी के रही और जितना सुनता है लो सब क्यों के सब हरे रही, ये सुने के सुना दी। और रेडियो रिमझिम के बारे में हम एगो कहल चाहते नहीं, बहुत हमारा अच्छा लगल रेडियो रिमझिम सुने में, बहुत दिन से रेडियो रिमझिम सुने नहीं हम, बहुत हम और गणेश भी है बहुत दिन से सुने नहीं सन, अभी श्रुति दीदी रहनी न तबे से हमनी के सुने नहीं सन, ऊ रहनी और अफसर सर रहनी तो वह चल गए नहीं हट गए नहीं, और श्रुति दीदी दिव्या दीदी आनी तो वह हट गए नहीं, और सोनी दीदी आनी तो वह हट गए नहीं, तना बाद रउआ आयल बनी तो देखा तो नहीं रउआ हटे नहीं की, लेकिन ना हटे तो बहुत बहुत अच्छा रही रहुआ हम सब के साथ आवनी बोले नी इंजॉय करनी बहुत हम सब के अच्छा लगे लवे हम सब के छोड़ के मन जब कहीं नजर बिना मन ही ना लगी बहुत अच्छा लगे लवे हमने संग के और मनोरमा दीदी बानी तो वो बहुत अच्छा लगे लवनी तो 3 बजे से तो ये कहा चल दिन बहुत अच्छा लगे ला हम सब को बहुत दिन से सुने नी से रेडियो रिमझिम ठीक बा
4: जीजा मैंने तैयार ना होके।

0: बुझने।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
7: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है करिश्मा जी की तरफ से, जो कि वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
8: थैंक यू दीदी, गीत प्ले करे खाती बहुत बहुत धन्यवाद के दिल से। लेकिन एगो बात कहल जाते लोग कहे गीत ये कार देते तनी गुनगुनाए तो तनी अच्छा लगे, गुनगुना दी तनी गीतिया में, सब गीत में गुनगुनाए तो बहुत अच्छा लगे, हमने सके अच्छा लगे लवे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रोग बजाए खाती, बाय।
7: और कृष्णा जी की तरफ से फीडबैक मैसेज थैंक्स का पहुंच गया है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, गुड आफ्टरनून आन बान सान, और मेरा नाम आप बताइए, और दोनों गुड़ छुके प्रणाम, और मेरा नाम आप बताइए, और जी आपका नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से। और लिख रहे हैं कि आज तारीख भी कह रही है मेरी जान, मेरे तेरे अलावा कोई नहीं है, और तेरे थे, तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। और क्या बात है, क्या लाइन पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ ही यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैंने ऐसी औरत भी देखी, मैं ऐसी औरत तो मैंने ऐसी भी औरत देखी हूँ और जो घर में आग लगाकर मंदिर में दिए जलाने जाती हैं। और क्या ही कहूँ आपके इस लाइन पे, कुछ कह भी नहीं सकते। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सॉरी फॉर मिस्टेक, नेम ऑफ सालसा और द रियल नेम ऑफ सलमा अगहा, और मैम टुडे मे बी पॉसिबल माई रिक्वेस्ट सॉन्ग। जी बिल्कुल, आपके गाने को आज प्ले कर सकती हूँ क्योंकि पूरा एक हफ्ता आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सऊदी अरब से, और इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपसे, और मैंने अभी आपका सही नेम लिया। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पर बनी है, बनी रहे। और भारती जी कैसी हैं आप, और मैं भी शोर से जुड़ चुका हूँ और रोहित देहरादून से, और गाना सुनना है, नाइस सॉन्ग ओपनिंग। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि वेट कर रहा हूं, मुझे भी अपना गाना सुनना है। और लिख रहे हैं कि भारती जी आप कैसी हैं और मैं

और इसी के साथ यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। गौतम फ्रॉम दरभंगा बिहार से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के हम आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
5: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्र वासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
4: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
5: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँच गया है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स गाना प्ले करने के लिए, और गौतम फ्रॉम दरभंगा बिहार से मैसेज किए हुए हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि का हालवा भारती दी और रेशमा पठानपटी से, और मुझे भी आज गाना सुनना है और गाना सुना दीजिएगा, और रानी के करिश्मा के उनके भी, और मनोरमा मैम और उनके भी सुना एक बावे। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाला है संजय यादव दुबई से, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं करिश्मा के गाना बहुत अच्छा हुआ बता दें, और मैसेज करने वाले हैं गणेश जी, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा गाना कल भी नहीं बजा था, आज थोड़ा बजा दीजिएगा, और मैं मनोज शर्मा कररिया से, और मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो रिमझिम परिवार को और पूरे देशवासियों को, और मेरा गाना कल नहीं बजा था शायद मैम, मैं नहीं सुना था जी आपके गाने को, कल मैंने नहीं बजाया था इसीलिए आपने नहीं सुना। और लिख रहे हैं कि मनोज शर्मा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा गाना आज बजा दीजिएगा, तो जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गीत चल रहा है, और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दीदी जी नमस्ते, मैं सुधाकर सिंह सीतापुर उत्तर प्रदेश से हूँ, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है, और यहाँ पे हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है। हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम, गाना सुनना है।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
2: मधु सर से राजीव कुमार बोल रहे हैं।
1: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: मलकार सर राजीव से प्रमोद प्रेमी का गाना है।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को, और रामाजी यादव।
1: तो आपका गाना हम प्ले करते हैं,
2: ठीक है?
1: एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमा जेड पर।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो आप सभी को बता दूं कि आप फेसबुक पर से रेडियो रिमझिम से जुड़कर वहां पोस्टर पे लगे सारे प्रोग्राम के नंबर को नोट कर सकते हैं और कोई भी प्रोग्राम सुन सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि बीबी हो तो ऐसी मूवी का सॉन्ग सुना दीजिएगा, नए परा विरई से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इसे राज पप्पू ठाकुर। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरा गाना भी बजा दीजिए। और विराट यादव जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, तो जी बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है सुनील एमपी से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की बोल है तुझे याद न मेरी आई और बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इस गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
6: मैं उसको कह दूं अभी जाऊं

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। और आप सबको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ना है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7276। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि माता रानी की भजन सुनवा दीजिएगा, नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, और सभी रेडियो रिमझिम का को गाने के बोल। जितेंद्र धाकड़ गुना जिला से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। और जी मैं आपको बता दूँ कि भक्ति गाने मैं प्ले नहीं कर रही हूँ, और हाँ दूसरे गाने की फरमाइश करें तो प्ले हो सकता है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मैम टुडे मे बी पॉसिबल माई रिक्वेस्ट सॉन्ग, तो श्योर बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश को ज़रूर पूरा करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सऊदी से, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बा मैम। और संजय यादव दुबई से जुड़े हुए हैं, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दीदी जी नमस्ते, मैं संदीप प्रजापति, बंदीपुर जिला, अंबेडकर UP 45 से, और मुझे भी ये गाना सुनना है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि वाह क्या दर्द भरा गाना था। और मैसेज करने वाले हैं जावेद धनबाद से, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी 1 घंटे से ज़्यादा से हो गया है वेट करते हुए, और कितना वेट करना पड़ेगा, और मैसेज 12:16 का ही किया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है और आपको वेट नहीं कराऊंगी, और एक गाने के बाद आपके गाने को ज़रूर प्ले करूंगी। और यहाँ मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी एक गाना है और फरमाइश करने वाले हैं फैशन टेलर नागपुर महाराष्ट्र से, और लिख रहे हैं मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
7: मैं फैशन टेलर नागपुर महाराष्ट्र से, मेरी फरमाइश बजे एक पिक्चर है दिल, मुझे नींद ना आए मुझे चैन नहीं, गाना प्लीज सुनाइए मैडम। ओके

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रुमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:37 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हम गोल्डन टेलर और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और हमको भी एक गाना सुनना है, सुनवा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं कि गोपालगंज भारती जी, मेरा फरमाइश आज बदल गया है और आज का गाना दूसरा है और ज़रूर सुनवाइएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करेंगे। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गीत चल रहा है, और लिख रहे हैं आपके लिए गुलाब जामुन मिठाई भेज दिए हैं। और लिख रहे हैं गाय के खोया से बना है, और जी बिल्कुल हम लोग ज़रूर खाएंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम, आपकी आवाज़ का जादू ही कुछ ऐसा है कि जब आप रेडियो पर आती हैं तो रेडियो बंद करने का मन नहीं करता है, बस सुनते ही चले जाओ। और मैसेज करने वाले हैं जावेद धनबाद से, तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, और आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहा है, मैं गाना सुनना चाहता हूँ, और रोहित देहरादून से जुड़े हुए हैं और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
8: हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, जय माता की। भारती जी कैसी हैं आप, और आप सभी को जय माता की। मैं रोहित देहरादून से, और गाना सुनना है, गाने का बोल है

भारती जी, मैं सबसे पहले आपको ये गाना सुनवाना चाहता हूँ और आप सभी के साथ में ये गाना सुनना चाहता हूँ, तो प्लीज़।

0: भक्ति की शक्ति, आस्था की ज्योति और अधर्म पर धर्म की विजय का महापर्व है नवरात्रि और विजयादशमी।
1: इस पावन अवसर पर श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी, प्रदेश महासचिव जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार सह भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 मांझा ने समस्त क्षेत्र वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, हर परिवार में सुख समृद्धि आए और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे का भाव और सशक्त हो।
1: ये विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई आशाओं का संचार करे तथा सत्य और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जय माता दी, शुभ दशहरा। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं जितेंद्र बरौली से, कितना बजे बजेगा बता दीजिए। तो जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि सभी के गाने को प्ले किया जाए, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अकेली खुश रहना सीखो, क्योंकि साथ तो एक दिन जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर इंसान क्या चीज़ है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है गणेश जी की तरफ से, और यहाँ पे हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो।
4: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 एफएम में।
4: जी मैं मोहित शर्मा करड़िया से।
3: जी
4: जी गाना सुनना है।
3: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
4: ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें।
3: और गाना किसी को सुनवाना भी है।
4: गाना सुनाना है सुमन देवी, रेखा देवी और संध्या कुमारी को।
3: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
4: धन्यवाद।

0: तो भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9939365923।
13: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रूम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आता है, और अगर खुश हैं तो मोटापा, इसीलिए हफ्ते में 2 बार जरूर लड़े, कभी खुश कभी खुशी कभी गम। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है रोहित जी की तरफ से, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की भी फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दी, नमस्ते, मैं सुधाकर सिंह सीतापुर उत्तर प्रदेश से, और अपने दोस्तों के साथ एक सॉन्ग सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल पहुँची हुई है, लिख रहे हैं, गाने की बोल है, काहे के गोरी कैलू मोहब्बत, विनय तिवारी का सॉन्ग है, और लिख रहे हैं दोस्तों का नेम है संदीप प्रजापति, रोहित, विनय सिंह, और दीदी मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ, प्लीज़ सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आपके गाने को प्ले करूँगी। तो चलिए बिना देरी के हम आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और आप सबको बता दो कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कार्यक्रम शो बेहद अच्छा चल रहा है और मेरा सॉन्ग कब बजेगा, कब प्ले करोगे मैम? तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा और आज ही पूरा किया जाएगा। और बसंत कुमार ठाकुर जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स दी गाना बजाने के लिए। और सुधाकर सिंह जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, गाना सुनना है जिसका लिंक भेजे हैं और सुनना है और सुनाना चाहते हैं आपको, सोनू भाई को, राजकुमार राम कुमार पांडे जी, कमरान भाई, सबीता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, गजाला जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, खुशबू जी, सागिर अंसारी, आजाद भाई, सन्यासी भाई, समीर भाई, मुकेश भाई, गट्टा भाई, रोशनी जी, वीरेंद्र भैया को, दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और जी आपके भी गाने को अभी प्ले करूंगी, और चलिए बिना देरी के हम आपके गाने को प्ले करते हैं। और गाने की बोल है सुना ये बला मुँह, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके गाने को।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: शक्ति की उपासना, आस्था की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लेकर आया है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
5: इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के जदयू जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार पटेल जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर परिवार खुशहाल रहे और गोपालगंज में आपसी प्रेम, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।
4: विजयादशमी का ये पावन पर्व हम सभी को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री प्रमोद कुमार पटेल जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि दिलीप राम जी लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी, शामिल किया आप दिलीप राम। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहते हैं, सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं सोनू जी। और गाने की बोल है फिरो ना नज़र से नज़रिया, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के हम गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे। रेडियो रिमझिम 9

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर, और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई, संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
4: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उर्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
1: असम में नॉर्थ इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
4: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज स्वीडन में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
6: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलत नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
12: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
11: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत नहीं। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।
15: किस बात से डर रहा है यार, एज डिफरेंस। हर लड़की है ना अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है, फिगर उसके पास है, फादर तू है।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470309 या 9765-65750।
4: ए बाबा, घर भर के लोग बीमार बा, कहाँ जाएं?
5: सगा है इतना परेशान बाड़ू, चल जा मिर्जापुर मोड़ डॉक्टर बाबा के लगे।
6: जी हाँ, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, पागलपन, बांझपन, स्त्री रोग, शिशु रोग, गठिया, बवासीर, भखंदर, आँख, कान, नाक और दांतों के सफल इलाज के लिए आप भी मिर्जापुर मोड़ पर मिलिए डॉक्टर वशिष्ठ बाबा से।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल से।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार

0: करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 3580 76 या 95 999 27 982।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिंग जिम 90.4 FM में, और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और यदि कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि नवरात्रि की शुभकामनाएं मैडम जी, और लिख रहे हैं कि हमारी ओर से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज कुमार ठाकुर, ईश्वर राज ठाकुर और पप्पू राज ठाकुर की तरफ से, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और लिख रहे हैं कि मुझे सॉन्ग सुनना है, और लिख रहे हैं कि मैं नए पारा भिरई से, और बसंत कुमार ठाकुर, सरोज कुमार ठाकुर, और लिख रहे हैं कि कार्यक्रम सो बेहद अच्छा चल रहा है और मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आप बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिंग 90.4 FM पर ये बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं कि धन्यवाद मैम जी, आपने मेरे सॉन्ग प्ले करने के लिए थैंक यू, और लिख रहे हैं कि राधे राधे नए पराधीरे से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि माता रानी का भजन सुना दीजिए नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। और लिख रहे हैं कि सभी रेडियो रिमझिम को गाने के बोल रहा है और भक्ति गाने की फरमाइश की है, तो मैं बता दूं आपको कि भक्ति गाने की फरमाइश को हम पूरी नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ आप दूसरा गाना बताइए, हम जरूर बजाएंगे। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र धाकर जिला गुना जिला से, और लिख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, तो जी आपके गाने को हम प्ले करेंगे लेकिन भक्ति गाने की फरमाइश नहीं करिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और लिख रहे हैं कि मनोरमा दीदी जी मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम है गोल्डन, और लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, हम गोल्डन टेलर हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी एक फरमाइश है, प्लीज़ सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार प्रणाम भारती मैम, और मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए, और लिख रहे हैं कि मैं दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहली पंजाब से, और लिख रहे हैं कि मेरा भी फरमाइश है लिंक के माध्यम से भेज दिया हूँ और डेडिकेट करना चाहता हूँ ऑल फ्रेंड को, तो चलिए आपके गाने को हम बिना देरी के प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज। We'll be right back.

0: छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:07 हो चुके हैं और बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, और लिख रहे हैं कि मेरे प्यारी आरजे मनोरमा जी यानी रानी मुखर्जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और मेरा हालचाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और बहुत खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आँखों में नम भी है, दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी ना रुके, क्योंकि आपकी हंसी में दीवाने हम भी हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा दीदी प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आपके गाने को हम प्ले करेंगे। और लिख रहे हैं कि आज तारीख भी कह रही है मेरी जान, मैं तेरे अलावा मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है। और लिख रहे हैं कि तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं गणेश कुमार जी, जो कि पिपरा नारायण के रहने वाले हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, गुड आफ्टरनून। और लिख रहे हैं कि मैं बजाजी रोड लालगंज MD नौसाद MD सदाब, और लिख रहे हैं कि और साथ में MD निसार MD रिजवान को अभिनंदन टेलर भी। और लिख रहे हैं कि मनोरमा जी और भारती मैम आपको आदाब। और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, और गाने की बोल है कलम चबा गनी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।
1: छोटी हो गई,
2: फिर
1: भगवान आ गई,
2: फिर रे
1: इतना छोटी मरनी नो कि पढ़े के आदत है छोटू
3: बैगन।

अभी हम लोग बहुत ही सुपरहिट सा सॉन्ग सुन रहे थे और गाने की बोल थी कलम छिपा गई नहीं, और इसी के साथ यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए, और लिख रहे हैं कि साथ में एमडी मोहम्मद केरला से भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ

और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी एक बार फिर से लग चुकी है। और मेरा हाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचे बाजी को लिखने की आरजे भारती। आप किसी श्रोता को भी निराश नहीं करते हैं, बिल्कुल सभी का मैसेज पूरा करते हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। और लिख रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं नए पराए भी रही से बसंत कुमार ठाकुर जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दीदी जी नमस्ते, मैं संदीप प्रजापति और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि भोजपुरी में अर्ज किया है कि हंसते चेहरे के पीछे दर्द छुपावले वानी, हंसते चेहरे के पीछे दर्द छुपावले वानी, दिल टूटल दिल के पीरा सबसे लुकावले वानी, कि दिल के पीरा सबसे लुकावले वानी, जगरा खातिर छोड़ने हम दुनिया की खुशी, हजूही के याद में अकेले रोले वानी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैम। और लिख रहे हैं कि आज कुछ भेज नहीं पाऊंगा, गाड़ी चला रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौवन से। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार मनोरमा जी, हम राम कुमार राम दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ, और ग्राम गुलगामा का हूँ, और मुझे भी ये गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई और लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैम मेरा गाना चला दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जो कि पिपरा नारायण के रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और गाने के बोल हैं तारों का चमकता गहना। तो चलिए प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का संचार करे।
1: इसी मंगल कामना के साथ गोपालगंज के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर परिवार में सुख समृद्धि आए, समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो तथा हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आए।
1: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
4: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहा और लिख रहे हैं कि मैं मुन्ना खान कुवैत से, और मैं भी जुड़ गया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि गुरु नानक पूरा पंडिता पंजाब से, और लिख रहे हैं कि किशोर सबलिनिया, सावित्री सबलिनिया और सुमन सबलिनिया बेटू अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कि कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और लिख रहे हैं कि हम भी रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कि वो छोड़ गए हमें ना जाने उनकी क्या मजबूरी थी, वो छोड़ गए हमें ना जाने उनकी क्या मजबूरी थी, खुदा ने कहा इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये कहानी तो मैंने लिखी ही अधूरी थी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जय किशोर प्रसाद जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं जितेंद्र धाकड़ गुना जिला से, और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।

अभी हम लोग सॉन्ग सुन रहे थे, गाने की बोल थी, जान ले वो जलवा दिखा के, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैडम जी मेरा गाना बजाने के लिए, और लिख रहे हैं कि और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं रोहित देहरादून से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, दीनानाथ यादव लकड़ी दरगाह से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है

और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि भोजपुरी में अर्ज किए हैं, कहना है अब तो आखिरी अर्ज बाय एक भाई, और लिख रहे हैं कि अब तो आखिरी अर्ज बाय ए भाई, दिल लगा के जी हमके सिखावलस प्यार, अब ओकरे गली से डर लागेला, रात के सपना में भी आवेले वो अब तक सपनों से डर लागेला, और लिख रहे हैं कि सब कहेला भूल जाओ के और भुलाए के कोशिश से भी डर लागेला, टूटल दिल लेके कहाँ जाएं हमार भाई, अब तक खुद से भी डर लागेला। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि मैं मेरा भी गाना चला दीजिए, और लिख रहे हैं कि मैं राकेश भारती बक्सर से जुड़ा हूँ, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, और फरमाइश पहुँची हुई लिंक के माध्यम से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527-88291। यदि कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776-16-65-96 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया राकेश भारती जी की तरफ से, और लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैडम जी हमसे कोई दुश्मनी है क्या जो हमारा गाना नहीं बज रहा है? जी तो नहीं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, इससे पहले फरमाइश पहुंची हुई है। और लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, हम गोल्डन टेलर से जुड़े हुए हैं, तो जी आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दीनानाथ यादव लकड़ी दरगाह से, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और गाने की बोल है बंसी लधुन सुन के पागल भई जवाना, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए आपके गाने को हम बिना देरी किए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुने थे और गाने की बोल थी तोहरा निया ने काना। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैडम जी। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र धाकर गुना जिला से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शमशेर मुंबई से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और मैसेज करने वाले हैं श्याम चौधरी जो कि

जो नूर है उससे दिल मेरा कितना दूर है। लिख रहे हैं कि चेहरे पे आपकी जो नूर है उससे दिल मेरा कितना दूर है। कोशिश तो बहुत की भूल जाने की आपको, पर कमबख्त दिल आपके ही फितूर में चूर है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और मैसेज करने वाले हैं श्याम चौधरी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत ही खूबसूरत लाइन थी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग भारती मैम, और लिख रहे हैं कि थैंक्स, और लिख रहे हैं कि जमुई बिहार से जुड़े हुए हैं, और प्लीज़ नाम लिखिए ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते, नमस्कार मनोरमा जी, हम राजकुमार राम दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, और गाने के बोले अनुराधा पनवाल जी की आवाज़ में है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो 90.4 FM पे खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:54 हो गए हैं और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि गुजरे हुए दिन याद आ गए ये सॉन्ग सुनकर, और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र धाकर जी जिला सिंह। करने वाले हैं जितेंद्र धाकर गुना जिला से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि

0: मैडम जी हमसे कोई दुश्मनी है क्या जो मेरे गाने को प्ले नहीं कर रहे हैं? तो नहीं, चलिए आपके गाने को हम बिना देरी किए प्ले करते हैं। और क्या है आपकी, क्या है इनकी फरमाइश, चलिए सुनते हैं।
1: हम गोल्डन टेलर तिनफड़िया से बोल रहे हैं। हमको एक गाना सुनना था जो फिल्म का नाम है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, और गाने का बोल है तेरे घड़े में बोल मेरी रानी पेट्रोल डालूं या कुएं का पानी। और ये गाना जितने रेडियो रिमझिम सुनने वाले श्रोता हैं सबको सुनवाना चाहता हूं। बजा दीजिएगा, धन्यवाद।

उसरदाओ। अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इसी के साथ सबके तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुंच गया है। तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 72776 16 65। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मैं लूँगी आप सभी से विदा। और जिन लोगों की गाने पूरी नहीं हुई है उन लोग की गाने को कल पूरी किया जाएगा। और सबके तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच गया और इसी के साथ यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि दिल से शुक्रिया मैम गाना बजाने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं गोल्डन टेलर जी। जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे फरमाइश पूछी हुई है, इनकी फरमाइश को पूरी करते हुए मैं आप सभी से लूँगी विदा।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती रेशमी ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती गमछा लुंगी साड़ी कुर्ता कंबल शॉल जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा प्रभु मार्केट मीरगंज गोपाल मंदिर गेट हथुआ थाना रोड भोरे थाना चौक बरौली स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
4: शक्ति की आराधना आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
5: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्र वासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
4: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
5: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम।
4: सुनो दिल।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
15: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070-32042 पे।
16: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
17: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
16: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
13: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
18: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
19: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रिक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
19: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
4: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
3: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
4: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
1: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर सहयोग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
1: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।
5: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ए बाबा, घर भर के लोग बीमार बा, कहाँ जाएं?
7: दगा है इतना परेशान बाड़ू, चल जा मिर्जापुर मोड़ डॉक्टर बाबा के लगे।
8: जी हाँ, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, पागलपन, बांझपन, स्त्री रोग, शिशु रोग, गठिया, बवासीर, भखंदर, आँख, कान, नाक और दांतों के सफल इलाज के लिए आप भी मिर्जापुर मोड़ पर मिलिए डॉक्टर वशिष्ठ बाबा से।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम।
9: सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: भक्ति की शक्ति, आस्था की ज्योति और अधर्म पर धर्म की विजय का महापर्व है नवरात्रि और विजयादशमी।
4: इस पावन अवसर पर श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी, प्रदेश महासचिव जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, बिहार सह भावी प्रत्याशी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 मांझा ने समस्त क्षेत्र वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है।
3: उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, हर परिवार में सुख समृद्धि आए और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे का भाव और सशक्त हो।
4: ये विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई आशाओं का संचार करे तथा सत्य और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: जय माता दी, शुभ दशहरा।
5: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
6: Jab phone kendi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
7: Hello, namaste, namaskar, kaise hain aap sab? Umeed karti hoon aap sab theek honge. Main hoon aap sabke dost RJ Manorama aur aap sun rahe hain Radio Rimchim 90.4 FM aur samay ho gaya हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
8: हाँ हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
8: नमस्ते मैम।
9: जी नमस्ते।
8: आज से मेरा जल्दी लग गया, दोपहर में लग गया
9: जी।
8: आज से मैंने दोबारा ही डायल किया, दोनों मतलब टक्कर से लग गया।
9: अच्छा जी।
8: हाँ
9: बढ़िया। वैसे नाम बता दीजिए अपना।
8: नाम मेरा उमा शंकर सिंह है।
9: और कहाँ से?
8: उत्तराखंड से बोल रहा हूँ मैं।
9: तो आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना?
8: बस बिल्कुल। अभी तो दो तीन दिन पहले बहुत भयंकर तूफान आया था, बोले गिरे थे, बहुत भयंकर आधी तूफान आया था, बोले आए थे। अरे हमको भी कुछ लाज ले लो, मैं मुझे भी सुनना है।
9: जी बिल्कुल बता दीजिए।
8: जाते हो चले जाना आखिरी सलाम लेते जाना, जाते हो चले जाना आखिरी सलाम लेते जाना।
9: आप मुझे गाके बताइएगा।
8: गाना गाने आता तो मैं जरूर गा लेता, गाना गाने का हमने कभी शौक रखा ही नहीं, बस खाली गाना सुनने का शौक है मेरा। हमारा रेडियो 5 बजे से बजने लगता है, सुबह सुबह 5 बजे से ही।
9: अच्छा।
8: हाँ, और रात को बंद होता है 1:30 बजे रात को। हाँ
9: तो मतलब लगभग कितने समय से सुनते आ रहे हैं ये कार्यक्रम?
8: आपका कार्यक्रम तो मुझे लगता है कि साल भर से, तो हमको बहुत बार में पास रहा ना, बाकी हम और भी चैनल पे सुनते रहे।
9: बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। गाना आप बताया, गाना डेडिकेट भी करिएगा।
8: गाना तो जितने भी श्रोता सुनने वाले हैं रिमझिम के सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा। अब तो 4 लोगों का नाम लो, बाकी फिर वो टाइम बर्बाद होता है, फिर काम भी नहीं था होता। ठीक है ठीक है
9: ठीक है।
8: नमस्ते नमस्ते।

0: जी योगेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: तो और बताइए क्या हो रहा है?
1: अभी तो घर में है, बढ़िया है, बाकी सब ठीक है।
0: चलिए बढ़िया। तो क्या है आज की आपकी सुनवाई?
1: अवतार फिल्म से सुनवा देंगे, चलो बुलाया है, माता ने बुलाया है।
0: ओके, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: श्रीपाल गोयल जी है, धीरज रबारी जी है, अभिनीत पहुजा जी है, तो चंद अग्रवाल जी है और सभी साथी।
0: ओके योगेश जी, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: धन्यवाद
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का संचार करे।
1: इसी मंगल कामना के साथ गोपालगंज के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर परिवार में सुख समृद्धि आए, समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो तथा हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आए।
1: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा। की उपासना, आस्था की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लेकर आया है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
0: इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के जदयू जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार पटेल जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर परिवार खुशहाल रहे और गोपालगंज में आपसी प्रेम, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।
1: विजयादशमी का ये पावन पर्व हम सभी को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री प्रमोद कुमार पटेल जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 से 7 तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 तक बैठते हैं।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: Now pick your phone up.
11: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
13: वालेकुम मैम।
12: जी वालेकुम अस्सलाम।
13: कैसे बने जी?
12: जी बिल्कुल ठीक बनी, अपन बताइए।
13: ठीक बात ना हो, नाश्ता तो भाई है जी।
12: हाँ हाँ, नाश्ता तो भाई ला रहा हूँ भाई की ना।
13: जी हम नहीं नाश्ता पानी, आपका इंतजार बात तो हो जा।
12: जी जी
13: नाम
12: प्रचार कर दिले बनी लोग
13: रानी मुखर्जी।
12: हाँ कहे नहीं लो की रानी मुखर्जी सन आवाज बाटे।
13: हाँ जी सही कहत, दिलीप राम जी वाले आदमी प्रचार कर देनी ना, सही कहत लगे
12: पड़ेगा। अब वहाँ की अब जब भी बात करें तो कहे नहीं कहा की रानी मुखर्जी बात होते। जी जी बिल्कुल ठीक बानी बताई।
13: मुखर्जी जी ठीक
12: बाकी
13: मेला
12: अभी ना भी बात है
13: राजा दल बनता बड़ा अच्छा से बनो जी।
12: जी चलिए वैसे गाना बता दी, कौन गाना सुने
13: जानते मैं कौन सी गाना सुने
14: प्यार में
12: हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो ननवे सुन के खुश हो गयी।
13: बड़ा
12: गाना बजा रहे थे
13: खुश हो
12: जाए। हाँ गाना जन बताइए सुनवा के
13: रानी बाड़ी करिश्मा बाड़ी जितना
12: लोग चलिए तो फिर गाना प्ले कर

0: हेलो, सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: हाँ मैम, हम जाकिर हुसैन राज्य बिहार को गोपालगंज जादवपुर से बोल रहे हैं।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: सब ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छा रहना चाहिए मैम। तो मैम गाना सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, बता दीजिए।
0: हाँ मैम, गाना सुनना चाहते हैं, मन सपना के मोहल्ले बना के दुनिया ठेला चलाई, जिंदगी के खेला समझ में ना आवे।
1: अच्छा, और गाना ये के डेडिकेट भी करके चाहता नहीं?
0: हाँ, सूफी आलम है, मेराज है, जुकलेश शर्मा है, यूसुफ अली है, और मोहम्मद कुक है, उसके बाद और रेडियो को जितना हमारे श्रोता है उन लोगों को और आपको।
1: जी जाके भी चलिए, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके, ओके।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 5790।
10: तो दोस्तों, तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
11: अस्सलाम वालेकुम।
12: वालेकुम अस्सलाम।
11: थोड़ा सा गाना सुन रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ।
12: जी बिल्कुल, गाना सुनवाएंगे, पहले नाम बता दीजिए अपना।
11: नाम हमारा रफी कर लीजिए। अच्छा,
12: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
11: गाना सुने हो गया
12: जी, यार आपका हुआ है।
11: हमारा भी हो गया, अभी करना सके।
12: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
11: सुनना बहाना।
12: जी जी, गाना तो बहुत ही अच्छा है। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
11: आपको सुनाना है, रश्मि जी को सुनाना है, जितने भी रेडियो में सुनने वाले सब लोग को सुनाना।
12: जी जी, चलिए तो फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते। इसके
0: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
1: लिए दिल से धन्यवाद है आपको। और सब सुनाइए, कैसे हैं?
0: जी सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं।
1: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, बगहा पूर्वी चंपारण से।
0: जी, और बताइए क्या हो रहा है।
1: जी अभी तो आपकी कोयल जैसी मधुर आवाज में बातें कर रहा हूँ सुनकर, और साथ में बिजनेस व्यापार भी चल रहा है, दुकानदारी।
0: अच्छा जी,
1: जी भारती जी बोल रही हैं?
0: नहीं
1: आपका शुभ नाम?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: मनोरमा
0: जी
1: अच्छा ठीक है। और मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
0: जी मौसम बता दूँ तो धूप निकला हुआ है।
1: जी बहुत अधिक गर्मी भी यहाँ पर है, धूप के साथ में लग रहा है कि मई जून का महीना चल रहा है, वैसा मौसम है अभी। जी
0: अपना नाम एक बार और बता दीजिए।
1: रामविलास प्रसाद कुशवाहा बगहा पूर्वी चंपारण से।
0: अच्छा जी, तो
1: जी
0: आज कौन सा गाना सुनिएगा आप।
1: जी फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में, भोजपुरी सॉन्ग है, और गाने का बोल है तू दीवानी हो तो आ जा।
0: क्या गाना, आप मुझे गा के बताइएगा तो लाइन।
1: जी गाता नहीं हूँ, सिर्फ सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा जी, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप गा के बताते तो अच्छा लगता।
1: जी बहुत अच्छा, आपकी आवाज बहुत अच्छा है, कोयल जैसी मधुर आवाज है। पहली बार आपसे बातें हो रही है।
0: जी जी इसलिए मैं भी कंफ्यूज थी, इसलिए दोबारा नाम पूछी आपसे।
1: जी। अरे गाना सबसे पहले मनोरमा जी आपको सुनाना चाहता हूँ,
0: जी थैंक यू।
1: और दोस्त लोग संजय साजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू का, अभय कुमार, सुदीप कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, राधा कुमार, सोनू कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, रीता जी, सुजीता जी, सूजमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जसमी जी, अंचल कुमार जी, कंसराज जादू जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी मनोरमा जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी धन्यवाद।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।

0: कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
1: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
0: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35 8 76 या 95 9 99 27 9 82।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
5: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो,
6: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। आवाज थोड़ा बहुत स्लो आवता, कट कट के आवता। हाँ बोली,
9: आप सुना था?
8: हाँ हाँ आप सुना था।
9: अगर अकाउंट
8: ना ना आज हमारे बाबा
9: गाना सुना दिए जरा।
8: बिल्कुल बता दी, कौन सा? और गाना के बोल गाना कैसे सुना है बिल्कुल नहीं।

0: मनोरमा जी का सुनाए के बाद,
1: हाँ बिल्कुल सुनवाएं। अच्छा
0: रानी जी का सुनाए के बाद,
1: जी।
0: वो ज्यादा झगड़ा कर देनी।
1: सब
0: हाँ
1: कर ही लो हमरा से।
0: झगड़ा करे वाला काम कर, बच्चे झगड़ा करू।
1: एमे अब गाना नहीं की गावत, एमे कौन झगड़ा करे वाला बात बा।
2: अच्छा एक दिन गुना दे मुई में।
1: अच्छा ना यहाँ के ना अच्छा लगे हम ना गुनगुना
0: हमरा अच्छा लगे,
2: अच्छा लगे
0: थोड़ा सा गुनगुना के छुट्टा खोल दे क्या कर पता नहीं माने ऐसा
1: ना। सोमवार के बाजी ये जाई गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो रिमशन 90.4 FM।

0: ना तो जाड़ा निकल जाए।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
1: सलाम भाभी मैम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसन वानी?
2: हम तो ठीक बने, रोवा बताए रोवा कैसन वानी?
1: हम बहुत अच्छा बानी और बहुत खुश बानी। आज मेहनत सफल भइल।
2: अच्छा, फर्स्ट कॉल लागे?
1: हाँ, बहुत कमे लोग के फर्स्ट कॉल लागे ला मैम। मतलब सोचिए जे लगावे ला। और हमारे फेवरेट आरजे भारती मैम के नाश्ता बनी हो गई।
2: जी हमार तो हो गई, रुआ बताए और हो गए।
1: जी मैम अभी तो भइल टाइम देते हुए फसल लगा देने।
2: चलिए बढ़िया, अभी तो मतलब घर पे बानी।
1: जी मैम घर पे बानी, छुट्टी मनाओ तनी।
2: चलिए बढ़िया मनाओ।
1: मैम कभी कभी छुट्टी ले लेके चाहे मैम, लेकिन घर में रह के कब को छुट्टी ले अलग मजा।
2: ठीक बात
1: है। जी मैम, और जैसे कि अभी बुट्टा के दिन रहला बहुत अच्छा लगा ला। लेकिन मैम एगो बात समझाना के मतलब रिकॉर्ड में काटे न।
2: बिल्कुल ना काटे।
1: रानी जी बानी, उनका वजह से हम मतलब भोजपुरी बोलता नहीं तो हमें बहुत सुकून मिलता। मतलब उनके देखा देखी पूरी बोलने को स्टार्ट करनी, हम बहुत सुकून मिलता। मतलब तो हमें भोजपुरी में बात करके आते उनका के धन्यवाद बोले।
2: बिल्कुल,
1: काहे की मतलब सुकून जन बानो भोजपुरी में बात करके। हिंदी में ना आवे ला समझ में आ गए। लेकिन गाना के फरमाइश हिंदी करे।
2: बिल्कुल बता दी।
1: काहे की ज्यादा हम भोजपुरी गाना ना सुने, ज्यादा हिंदी सुने। तो हमरा के एगो गाना सुनाई, गाना के नाम बा मनोवा लागे। हम लोग के गाना अच्छा गाना बा,
2: काफी बेहतरीन गाना बा।
1: देखे बढ़िया अंदाज में जुड़े के बा सोमवार के कोशिश रही। लेकिन मनोवा मैम खिसिया न, लेकिन हमारे फेवरेट आरजे भारती मैम है।
2: ऐसा कोनो बात नहीं है, गुस्सा ना आवेला।
1: जी मैम, तो लेकिन मैम हम अपना के बताते नहीं, हम बहुत पुराना है रेडियो सुनने वाला। जब से हमारा पास फोन हुआ तब से छोटा वाला ऐसे सुनत नहीं है पहले, अब ऐप के द्वारा सुने नहीं।
2: चलिए बढ़िया भावे, ऐप के द्वारा साफ सुनाई देला ना।
1: जी मैम बहुत साफ सुनाई देला। जी मैम, तो गाना भुलाएम न ये वाला बजाएम।
2: पर गाना क्यों के सुनेबो करेम?
1: गाना के कर सुनाएम मरुआ मैम के, रुआ के, सभी आरजे के, सभी रेडियो दोस्त के। एक साथ नाम लेम तो बहुत लोग बा, वैसे ऑल बोल देता नहीं।
2: जी जी, तो राहुल गाना प्ले करता नहीं।
1: ओके, मैं एडवांस धन्यवाद बोलिए देता नहीं।
2: रेडियो कॉल कहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बाय
2: बाय।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी। संतोष

0: फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
4: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलत नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत नहीं, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick your phone up.
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
11: अस्सलाम वालेकुम मैडम
12: जी। वालेकुम अस्सलाम।
11: गाना सुने के बाद?
12: जी बिल्कुल, बता दी।
11: नवरात्रि चला था तो हम मुसलमान हैं, बाकी तब फिर भी दुर्गा जी के गाना सुने के बाद हाजिर के खड़ी हूँ द्वार तेरी माँ, आज चुनरी चढ़ा दूँ द्वार तेरी माँ, ये गाना सुनने के बाद। जय माँ विष्णु देवी के गाना हो
12: जी। जी
11: तो गाना सुनाए
12: जी, हमारा के गाना सुनाए। पहले अपना नाम तो बता दी।
11: नाम हमारे मौला दिलिया।
12: और कहाँ से?
11: हम कैसोलिया गाँव से बोल रहे हैं। पूजा बेची हम तो गाना सुन ले रहे एकदम खुश करे वाला।
12: जी सर, वो रेडियो के माध्यम से सुने?
11: हाँ मैडम
12: जी, वो रेडियो के माध्यम से सुने नहीं की मोबाइल ऐप के माध्यम से?
11: मोबाइल से सुने नहीं, मोबाइल से कनेक्ट करके किन्ला बनी डीजे छोटका वही तो सुनी ले।
12: अच्छा, कैसा लगे ला कार्यक्रम रेडियो?
11: बाप, दिल खुश हो जाला।
12: अच्छा जी।
11: यूट्यूब भूला गेल बनी, यूट्यूब से सुनत रहनी पहले, जब तक रेडियो रिजन सुनत रही हम, तो जब से शुरू भेल तब से, जब से रेडियो रिजन शुरू भेल बनल बन जा रही गोइलो बनी हम रहुआ।
12: अच्छा, चलिए खातिर हम रुवा के तहे दिल से शुक्रिया करत हानी। और गाना जो बतानी है क्योंकि सुनवाए की भी चाहत हानी।
11: हाँ हाँ, सब हिंदू मुस्लिम सब के सुनी, सब जो सुना था रेडियो रेंजी में वो सब सुनी।
12: जी जी, तो फिर और गाना हम प्ले करता नहीं
11: शाम के बेरा में सुनाए, मुझे दिल खुश हो जाए ना।
12: जी जी, 5 से 7 के बीच बाजी।
11: जी जी, ये सब के दिल खुश हो जाए, गाना अच्छा बा।
12: जी जी, गाना बहुत ही अच्छा बतले वानी रुवा। जी,
11: वैसे हिंदू मुस्लिम में कोनो बात नहीं है, ऐसे ही आदमी के दुर्गा जी के दिन से हमने दो 4 पैसा बचेला, खिलौना बेच

0: दुर्गा जी के मंदिर पर लगावे नहीं जा भूजो बेचाला तो ओसे कोनो बात नहीं हिंदू मुस्लिम के कोनो विवाद नहीं है। अच्छा बा अच्छा लगे गाना बड़ा टाइम में बाजी तो अच्छा सब्जी जो सुनी तो दिल खुश हो जाये लोग और वो के बोलता नहीं मोनार्मा जी की भारती जी
1: मोनार्मा
0: अच्छा एक बार
1: जी सुना दे सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM
0: जी जी जी

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते। जी
1: कई समाचार अपन?
0: बिल्कुल ठीक बा, आपन बताई। जी
1: गाने सुने के बाद?
0: जी बिल्कुल बता दी।
1: माता रानी गाने सुने के बाद बोली राजा के?
0: कौन सा
1: माता रानी के बारे में बोली राजा के?
0: कौन भी गाना? अच्छा, वैसे नाम बता दिया।
1: परमात्मा कुमार बदल का करती है।
0: अच्छा जी, तो अभी बताई रहो, ठीक ठाक बानी नो?
1: बानी रहो, ठीक बानी नो।
0: हाँ हाँ हाँ, वो बढ़िया बानी रहो।
1: सोमवार के सोमवार कॉल हम कर ही ले रहे हैं।
0: अच्छा जी, ये तो रिकॉर्डिंग चले ला सोमवार बुधवार और शुक्रवार, आप रोज तीनों दिन। ना ना जी, रोवा मतलब 12 बजे वाला शो में जुड़ा था ना, तो ओमे एक हफ्ता के बाद चले ला है मेरे रोवा बुधवार सोमवार।
1: बुधवार सोमवार शुक्रवार?
0: जी जी, मैं रोवा कॉल तीनों दिन।
1: आई नाम का बजे?
0: जी हमारा नाम मनोरमा।
1: जी,
0: और एक ही साथ गाना हम प्ले करते हैं। जी सुन रहे हैं सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो,
12: हेलो माय चॉइस
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेल इंजन 90.4 एफएम में।
12: मैडम भारखंडे पर नाम स्वीकार कर रहे हैं
11: जी। जी प्रणाम।
12: भारत में बोलते तो नहीं
11: मनोरमा
12: जी, जी हम कंफ्यूज हो जाते हैं
11: जी।
12: सुधीर सर बोला था स्पीकर इन वाइज ला देवर
11: जी। जी कैसन मानी
12: बिल्कुल ठीक मानी
11: बोले किसी गई नहीं
12: प्रोसेस कर रहे भोजपुरी में बात करें हल्का फुल्का बोल रहे
11: जी। जी बहुत ही अच्छा लगा था, अब तो कंफ्यूज हो गए की रघुआ इनकी किया जी, तो बताइए क्या होता है,
12: क्या होता है अभी बीच में हमारे घंटे में एक क्लास के तो प्रोसेस करते करते अकाउंट लगी
11: तो क्या बात के
12: फरमाई से पुराने भोजपुरी फिल्म दंगल फिल्म के गाना जय कलाकार आशा भोसले और महोदय के गीत के बोला छोट गई ले किस्मत यह भय गई ले जुलमवा चोरे संग निखट सन हो गए कोई दवा दवा लगनवा
11: एक बार और बता दी
12: छोट गई ले किस्मत यह भय गई ले जुलमवा चोरे संग निखट सन हो गए कोई दवा दवा
11: और गाना के ऊपर सुनवाई के भी चाहता नहीं
12: तो फिर समय रुआ के हम सुनी इतने भी रेडियो इंजिन के लिसनर है सब कभी कुछ ना रानी और उसके फ्रेंड्स भी हैं जिन पता ज्यादा से सीधे पता है मदन कौर कुमारी कृष्ण कौर उन सब सारे साथी के डेडिकेट कर रहा
11: चलिए तो फिर अब गाना प्ले करता नहीं
12: जी मैम
11: इन सबके साथ रेडियो 90.4 FM
12: ओके मैम।

रनिया हाय रे तोहरा नखरा जैसन फिल्म की रनिया के बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM
0: में। नमस्ते दीदी,
1: जी नमस्ते।
0: क्या हाल हुआ?
1: जी ठीक बा, अपन बताई।
0: ठीक हुआ हमारे दुआ से।
1: अच्छा जी, आज लेट हुई फोन करे में?
0: आज लेट से कहीं नहीं है।
1: अच्छा जानबूझ,
0: जान बुझ के लेट से कहीं नहीं है, कहीं है तो बस आगे तो बिजी बिजी बताओ
2: तो याद में के पास हम याद पढ़नी है।
1: अच्छा चलिए,
0: काम लगता है मतलब तो बर्तन धोता निशान।
1: अच्छा
2: तो हम याद पाट नहीं है,
1: ठीक कहीं नहीं है,
0: कनिया राज आज रिकॉर्ड ही ना हुई हमारे।
1: अच्छा देखी हो गई, लास्ट कॉल रहुए बा,
0: लास्ट कॉल बा। हम ने कहीं बंद कर दिलो तो फिर धरा देनी है।
1: हाँ हमके पता लगे रहुआ करे मुझे से तो वेट करते रहनी है रहुआ।
0: ठीक है, खाना वाना हो गई बा?
1: हाँ हाँ खाना हो गई बा। नाम गाना बता दिया?
0: गाना सुने भी बटे बजा दी, भक्ति सॉन्ग कौन बजा दी पवन सिंह के।
1: अच्छा कौनो भी?
0: हाँ कौनो भी बजा दी भक्ति सॉन्ग।
1: चलिए क्योंकि डेडिकेट भी करे।
0: हाँ सबसे पहले तो रहुआ की रही, एक बाद भारती दीदी के रही, और गणेश भैया के रही, और रानी दीदी के रही, और उत्तम सोनी के रही, और रेशमा जी के रही, और बीटू प्रजापति जी के रही, और जितना सुनते हैं सबके।
1: जी जी
0: हमारा अच्छा लगल रहुआ बोले नहीं तो।
1: जी जी ऐसे लगेल जैसे की लागत है की कहिया के पहचान तनी सन।
0: चलिए ठीक है बा।
1: जी वैसे नाम बता दी?
0: नाम करिश्मा कुमारी पीपर नारायण से।
1: जी जी चलिए तरह गाना हम प्ले करता नहीं।
0: ठीक बताओ
1: जी, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: Now pick your phone up.
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो,
10: नमस्ते मैडम जी।
9: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
10: नमस्ते मैडम
9: जी। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं?
10: अच्छा जी, तो बहुत
9: सब बढ़िया है। आपने बताइए, आप नाश्ता सकी है?
10: मेरा सब बढ़िया है।
9: तो कौन सा गाना सुनिएगा?
10: गाना सुना देगा आपको नींदर न दिल में चला।
9: ये नेहा जी गाना मुझे गाके बताइएगा।
10: गाना ना गा
9: ना जी, हम लोग से गवा के सुने में अच्छा लगे। ना हमारे के ज्यादा ना गाई, दो ही लाइन गा के पंक्ति तो ठीक रहे।
10: मैडम
9: जी जी, अच्छा लग रहा है। गाना कैसे सुनाए के चाहते नहीं?
10: गाने से पहले आप
9: अच्छा, वैसे नेहा जी कहाँ से बोलो तुम लोग? अच्छा, गाना हम प्ले करते नहीं
10: मैडम जी। नमस्ते,
9: नमस्ते। सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: वालेकुम सलाम। रामा कंसारी सिंह चिड़िया से बोल
0: रहे
1: हैं। आप हैं, आप अपना बताइए कैसे?
0: बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: आपको मोहल्ला फिल्म का चीज बड़ी है मस्त मस्त ये गाना आपको और जितने रेडियो रिमझिम के श्रोता सुनने वाले हैं सबको
0: ओके जी। चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की

0: 5923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
4: जी मैडम जी नमस्कार।
5: जी नमस्कार।
4: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन गढ़ जिला बना मध्य प्रदेश से।
5: जी सुनील जी, क्या हो रहा है?
4: बस
5: आपकी फरमाइश क्या है आज की?
4: आज की फरमाइश है मैडम जी, सागर फिल्म का गाना है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सलाम।
5: जी और डेडिकेट भी है?
4: जी गोपाल ओझा जी है, जीतन लाहा जी है और गजराज सिंह लोधी है और केसरी सिंह राजपूत है, केसरी सिंह और कैलाश राजपूत बिटिया थे। ये सभी दोस्तों को डेडिकेट रहेगा और आपको, मनोरमा मैम को, रणवीर मैम को और मैडम का नाम भूल गया मैं, तीनों मैम को डेडिकेट रहेगा ये।
5: जी जी भारती जी, सोनी जी।
4: हाँ भारती जी, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को डेडिकेट रहेगा।
5: ओके सुनील जी, तो
4: ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
5: जी चलिए, तो फिर प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम।
4: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, रिकॉर्डिंग बंद कर, क्या हो गया है? एक बार में फोन लग गया है।
0: नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो चल रही है।
1: जी साहब, मास्टर बोल रहे हैं ग्राम धना से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: हम लोग ठीक हैं। आपका ये आज तो दूसरा दशहरा है, आप लोग का बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी जी, आपको भी।
1: फर्स्ट बार लगा रहे थे, थोड़ा बिजी बता रहा था, तो छोड़ दिए, फिर लास्ट में लगाएंगे। जी जी, और सब बताइए, मौसम ठंडी तो हल्की हल्की पड़ने लगा इधर।
0: जी जी, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है ना, तो और सब बताइए, खाना वाना हुआ आपका?
1: ना, अभी तो काम में लगे हैं। आपके प्रोग्राम सुन रहे थे 11 बजे तक, फिर कॉल लगाए तो अब सेट किए, तो यार वो चले जाते हैं, जुड़ेंगे।
0: जी जी, तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: गाना सुनवा दीजिएगा सहंसा मूवी, वर्दी का तू रोग जमा ले, टोपी वाले कर ले जो है करना, मैं नहीं डरना, वो जग मैं नहीं डरना। और सबसे पहले भारती जी आपको और नॉर्मा जी को और जितने रेडियो रेंजिंग सदस्य लोग हैं सभी को सुनवाना चाहता हूँ, और जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को। और हम लोग धनाओं से रोशन टेलर में सुनते हैं आपका प्रोग्राम। हम लोग का 3 साल हो गया लगता है हमको आपका प्रोग्राम सुनना।
0: जी जी,
1: तो सब कुछ है, हम लोग तो सुनते हैं आपका प्रोग्राम, हर प्रोग्राम हम सुनते हैं। अब अभी से 4 बजे तक सुनेंगे, फिर 5 बजे से हेलो फरमाइश आ जाएगा।
0: जी।
1: और फिर निर्गुण लगता है तो एक दूसरे सुन लेते हैं, निर्गुण को हम सुनते हैं, बढ़िया मदन राय का हो गया, तरह शर्मा का हो गया।
0: अच्छा लगता है।
1: हाँ हाँ
0: जी। और गाना जो बताए वो गाना आप डेडिकेट भी करिएगा।
1: जी जी, सारे रेडियो रिमझिम श्रोताओं जितने भी सुनते हैं सभी को, और आप लोगों को भी। अब हम लोग धनाओं से भी सुनेंगे रोशन टिकट में।
0: जी जी, चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी प्ले करिए।
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029494111 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: एपिसोड 59 59।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: प्रसाद क्लिनिक
8: स्त्री रोग ल्यूकेरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना कान का बहना गठिया साइटिका कमर दर्द अधेड़ी थनैली चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
12: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
11: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर करते।
12: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

0: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
1: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर योग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
1: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा। शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
0: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
1: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
0: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
6: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
10: अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% रही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में हुए शामिल, 100 से अधिक मामलों का किया निष्पादन। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित किसानों के बीच फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि का कल किया जाएगा वितरण। और रणजी ट्रॉफी में यूपी ने बिहार को एक पारी और 267 रनों के अंतर से किया पराजित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं।
11: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
10: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज का भारत विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है।
11: पावर के पर्पज पर जो फोकस है यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
10: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को आम लोगों की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वे आज पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए 101 आवेदकों की समस्याओं का निष्पादन किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजस्व, शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य और अन्य विभागों से जुड़े मामलों में संबंधित जिलाधिकारियों और अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। श्री चौधरी ने सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवनों, अस्पतालों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत, रख रखाव और उनका साफ सफाई का काम अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरा करने को कहा है। उन्होंने विद्यालयों में पेयजल, बिजली, शौचालय और चार दीवारी जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने तथा भवनहीन विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
10: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और केंद्र तथा राज्य सरकार की परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए सीएमओ डैशबोर्ड और समन्वय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डिजिटल व्यवस्था से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
12: मेरा मूल मकसद है कि पूरी तरह पारदर्शी हो, सरकार क्या नया चीज करना चाहती है ये भी जानना चाहिए और जो अनाउंसमेंट होते हैं उसको हर हालत में इम्प्लीमेंट करना है। सभी डिपार्टमेंट इस पर काम करेंगे। जिस तरह की कल्पना की गई है इसका तमाम लोगों के साथ जो डैशबोर्ड पोर्टल है पर समन्वय, ये दोनों काम जब अच्छे से होंगे तो हमको लगता है बिहार की गति में और तेज गति से हम लोग विकास कर पाएंगे।
10: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य गरीबों के जीवन में बदलाव लाना है। श्री चौधरी आज अभियान के तहत पटना के ज्ञान भवन में आयोजित रंगोली उत्सव को संबोधित कर रहे थे।
13: सेवा संकल्प का मतलब ही स्पष्ट है, गरीबों के जीवन को बदलो, गरीबों को उनको मूलभूत सुविधा पहुंचाओ। बिहार में 2014 तक 50 लाख लोगों को पक्का मकान नहीं मिला था, लेकिन मोदी जी की सरकार आई, आज 12 साल में मैं गर्व से कह सकता हूं कि 55 लाख लोगों को पक्का मकान दे दिया गया और लगभग 12 लाख लोगों को हम अगले इस वित्तीय वर्ष में देने वाले।
10: प्रदेश के बाढ़ प्रभावित किसानों के बीच कल फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
13: कल हम लोगों ने तय किया है कि 14 तारीख को कृषि इनपुट के तहत लाखों परिवार को उससे जोड़ेंगे और उनके खेतों का जो फसल नष्ट हुआ है उसमें भी सहयोग देने का काम बिहार की सरकार करने का काम करेगा। साथ
10: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्यागपत्र सौंपकर मंत्री परिषद की जिम्मेदारियों और राज्यसभा की सदस्यता से मुक्त करने का अनुरोध किया है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि वे अब जमीनी स्तर पर संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भाजपा के संगठन को मजबूत करना और राज्य में पार्टी का विस्तार करना है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद के 4 शिक्षक और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आइए सुनते हैं तिरोत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी परिदृश्य पर आधारित एक रिपोर्ट।
2: तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार 17 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। जदयू समर्थित अभिषेक झा, राष्ट्रीय जनता दल समर्थित रश्मि विनायक गौतम, जनसुराज समर्थित विमोहन कुमार और निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं। चुनाव में राजनीतिक दलों के समर्थित प्रत्याशियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच बहुकोणीय मुकाबले का आसार है। दिसंबर 2024 में हुए उपचुनाव में निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी ने विनायक गौतम को 10,915 मतों से हराया था। इस बार बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चुनाव को राजनीतिक दलों के संगठनात्मक प्रभाव और निर्दलीय प्रत्याशी की लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में फैले इस निर्वाचन क्षेत्र में 1,43,988 मतदाता है। इनमें 45,970 महिला मतदाता है। मतदान के सत्यम कुमार।
1: नवादा के गांधी स्कूल मैदान में आज एनडीए की चुनावी सभा आयोजित की गई। सभा में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नीरज कुमार और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नवल किशोर यादव के समर्थन में मतदान की अपील की गई। जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित एनडीए के कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा की विभिन्न समितियों के कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर कुमार ने समितियों से संबंधित लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं के विरोध में राजधानी पटना में विभिन्न वामपंथी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र गांधी मैदान से लोक भवन मार्च के लिए निकले थे। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी को हिरासत में भी लिया। राजगीर में खेले गए रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने बिहार को एक पारी और 267 रनों से हरा दिया है। पहली पारी में 540 रन बनाने वाले उत्तर प्रदेश के सामने बिहार की टीम दोनों पारियों में कुल 273 रन ही बना सकी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उत्तर प्रदेश के जिसान अंसारी और कप्तान करण शर्मा की फिरकी के सामने बिहार के बल्लेबाज टिक नहीं सके। इस जीत के साथ उत्तर प्रदेश को बोनस अंक सहित 7 अंक मिले। पहली पारी में बिहार की टीम 141 रन पर सिमट गई थी, जिसके बाद उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। दूसरी पारी में भी बिहार के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और पूरी टीम 132 रन पर आउट हो गई। मंगल महरूर ने 27 और सूरज कश्यप ने 25 रन बनाए। उत्तर प्रदेश की ओर से जिसान अंसारी ने 40 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि कप्तान करण शर्मा ने 17 रन देकर 3 बल्लेबाजों को आउट किया। माधव कौशिक को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी समाचार के लिए राजगीर से निरंजन कुमार।
1: भागलपुर में आयोजित प्रमंडल स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के फुटबॉल मुकाबले में अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग में भागलपुर की टीम विजेता बनी है। अंडर 14 आयु वर्ग में बांका की टीम ने जीत दर्ज की। इधर कटिहार में आज से अंतर प्रमंडल विद्यालय बॉक्सिंग बालक प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। स्थानीय विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से समस्त पाप और बाधाएं दूर होती हैं तथा सौम्यता और निर्भयता में वृद्धि होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश भर में मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मधुबनी में सक्रिय प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति लिमिटेड के प्रथम बोर्ड के लिए प्रबंध समिति के 10 सदस्यों का चयन किया गया है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों का चयन किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में सुपौल जिला ने सितंबर माह की राज्य स्तरीय रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। अररिया जिले के कुर्साकांटा थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक और नेपाली मुद्रा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर से एसएसबी की टीम ने 2 तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थों की खरीद बिक्री के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ के सब्जी मंडी के पास पिछले दिनों एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक कुमार गौतम ने सहोतरा थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मियों को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% रही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में हुए शामिल, 100 से अधिक मामलों का किया निष्पादन। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित किसानों के बीच फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि का कल किया जाएगा वितरण। और रणजी ट्रॉफी में यूपी ने बिहार को 1 पारी और 267 रनों के अंतर से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:47 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: दुर्गा पूजा पटना।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ,

0: 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: भक्ति की शक्ति, आस्था की ज्योति और अधर्म पर धर्म की विजय का महापर्व है नवरात्रि और विजयादशमी।
6: इस पावन अवसर पर श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी, प्रदेश महासचिव जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार सह भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 मांझा ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
2: उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, हर परिवार में सुख समृद्धि आए और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे का भाव और सशक्त हो।
6: ये विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई आशाओं का संचार करे तथा सत्य और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: जय माता दी, शुभ दशहरा। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: तू जो है।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तो भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
4: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
3: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
4: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
3: कहाँ?
4: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
5: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
6: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
5: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
6: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
5: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
6: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
0: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
10: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
11: तू जो है,
12: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
9: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
8: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
9: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
8: कहाँ?
9: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
0: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
2: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
2: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन, डॉक्टर अंशु के तिवारी लैप्रोस्कोपिक सर्जन
10: सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27 साधु चौक, गोपालगंज।
10: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।

अंगूरी।

0: सच्चाई की उपासना, आस्था की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लेकर आया है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
1: इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के जदयू जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार पटेल जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर परिवार खुशहाल रहे और गोपालगंज में आपसी प्रेम, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।
0: विजयादशमी का ये पावन पर्व हम सभी को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री प्रमोद कुमार पटेल जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ए बाबा, घर भर के लोग बीमार बा, कहाँ जाएं?
8: दगा है इतना परेशान बाड़ू, चल जा मिर्जापुर मोड़ डॉक्टर बाबा के लगे।
9: जी हाँ, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, पागलपन, बांझपन, स्त्री रोग, शिशु रोग, गठिया, बवासीर, भखंदर, आँख, कान, नाक और दांतों के सफल इलाज के लिए आप भी मिर्जापुर मोड़ पर मिलिए डॉक्टर वशिष्ठ बाबा से।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द?
11: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
13: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
14: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
13: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
14: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
15: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में निजी सचिव का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आयु सीमा है 38 वर्ष। ये पद अनारक्षित है। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के तुलजापुर हैदराबाद और गुवाहाटी स्थित ऑफ कैंपस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.tiss.ac.in। वेबसाइट का पता फिर से सुन लीजिए www.tiss.ac.in। आर्मी पब्लिक स्कूल सुखना में इन पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उप प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक अथवा मुख्य अध्यापिका अर्हता और अन्य मानदंडों के लिए देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल सुखना की वेबसाइट www.apssukhna.com। 31 मार्च 2027 तक तदर्थ आधार पर शिक्षकों की भी भर्ती की जानी है। पद हैं स्पेशल एजुकेटर PRT, PRT कंप्यूटर विज्ञान, PRT सभी विषय और PRT शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक, कराटे अनुदेशक। महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी तथा TGT बांग्ला और नेपाली। कृपया आर्मी स्कूल सुखना की वेबसाइट देखिए www.apssukhna.com। आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली में ये पद रिक्त हैं। स्वचालन एवं AI विशेषज्ञ, औद्योगिक अभियांत्रिकी, निरीक्षण स्वचालन तथा उत्पाद विकास प्रबंधक तकनीकी। पारिश्रमिक प्रतिमाह 1,25,000 से 1,75,000 रुपए रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए वेबसाइट www.aweil.in। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव एक पद, निजी सचिव 3 पद और आशुलिपिक 1 पद। पदों से संबंधित विवरण, पात्रता मानदंड, अपेक्षित अनुभव, आयु सीमा आदि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.nha.gov.in। मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। संयुक्त निदेशक प्रशासन रिक्तियां 2, प्रशासनिक अधिकारी रिक्ति 1, निजी सचिव रिक्तियां 3, सहायक अनुभाग अधिकारी 15 रिक्तियां, वैयक्तिक सहायक 16 रिक्तियां, स्टाफ कार चालक 4 रिक्तियां। पद परिचय, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रारूप और तैनाती स्थानों का विस्तृत विवरण आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.stqc.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
16: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
17: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
18: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
17: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
18: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
17: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। गोपालगंज, हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
19: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
17: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
20: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
20: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
21: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
22: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
21: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
22: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
23: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
24: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
23: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
24: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
24: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
24: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
25: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
17: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
25: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
26: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
14: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
15: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
16: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
15: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
17: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
18: माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का संचार करे।
19: इसी मंगल कामना के साथ गोपालगंज के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
18: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर परिवार में सुख समृद्धि आए, समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो तथा हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आए।
19: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।

0: मैटर अर्थात से केस गिलर्ट्स पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: प्रधानमंत्री ने भारत

0: भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल है। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एन मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: इंडिया एंड चेक रिपब्लिक, भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भू स्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं जिनमें 58

0: केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
2: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
3: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
4: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
2: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
1: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रूपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
7: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रूपए पर बंद हुआ।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
10: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
9: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
10: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
9: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
10: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
9: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
15: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
15: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
15: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710 30 92 या 90765665750।
16: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। शिक्षा विभाग के कार्यों की गई समीक्षा, छात्राओं को महिला सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य योजनाओं की दी गई जानकारी, पर्व त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, पंडालों का हो रहा है लगातार निरीक्षण, लापरवाह शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई का दौर जारी, आज भी एक शिक्षक हुए निलंबित, कई जगह से पकड़ी गई शराब और सड़क हादसे में हो गई एक बुजुर्ग की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ के नेतृत्व में आयुक्त गौरव कुमार की उपस्थिति में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें छात्रवृत्ति पंजीकरण, विद्यार्थियों को DBT के माध्यम से योजनाओं का लाभ, भूमिहीन एवं भवनहीन विद्यालयों के लिए भूमि की उपलब्धता, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं तथा सैनिक स्कूल कुचायकोट में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति हेतु OTR पंजीकरण 3 दिनों के भीतर 100% पूरा करने का निर्देश दिया, तो वहीं पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल और प्रोत्साहन राशि सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सत्यापन एवं प्रविष्टि का कार्य भी 16 अक्टूबर तक पूरा करने को कहा गया। भूमिहीन और भवनहीन विद्यालयों के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर 1 सप्ताह के भीतर भूमि उपलब्धता को लेकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। DDC ने कायाकल्प अभियान के तहत विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, रसोई घर, पुस्तकालय एवं भवन मरम्मति की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित समय सीमा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने सैनिक स्कूल कुचायकोट में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के संबंधित कर्मी उपस्थित रहे। बिहार सरकार के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास निगम गोपालगंज के अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र के द्वारा साइबर थाना गोपालगंज के सहयोग से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़का साखेन प्रखंड उचका गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा, चाइल्ड हेल्पलाइन और साइबर हेल्पलाइन के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध से बचाव, डिजिटल सुरक्षा एवं महिला अधिकारों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। छात्राओं को एनीमिया से बचाव, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व तथा जनसंख्या स्थिरता के महत्व की जानकारी देते हुए शिक्षा को प्राथमिकता देने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। छात्राओं की जिज्ञासाओं का भी विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। कार्यक्रम में लैंगिक विशेषज्ञता मुन्ना कुमार शर्मा एवं अनिल कुमार ठाकुर तथा वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ टीम ओम प्रकाश ठाकुर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इधर त्योहारों में विधि व्यवस्था को लेकर शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा आपसी भाईचारे को मजबूत करने और किसी भी संभावित समस्या के प्रति सतर्क रहने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से सभी पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए लगातार जगह जगह शांति समिति की बैठक भी करवाई जा रही है। दुर्गा पूजा के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी और तमाम पदाधिकारी लगातार पंडालों का निरीक्षण कर रहे हैं। जगह जगह पंडालों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन, प्रकाश और श्रद्धालुओं के आवागमन व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। पदाधिकारियों ने पूजा समितियों को सुरक्षित विद्युत वायरिंग, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी, पर्याप्त प्रवेश निकास मार्ग एवं भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने प्रमुख चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात नियंत्रण तथा असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी शांति समिति के सदस्यों से आपसी सहयोग, जिम्मेदारी और सकारात्मक सहभागिता के साथ त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पर्व त्योहार सामाजिक समरसता एवं भाईचारे के प्रतीक हैं। सभी जनता आपसी सद्भाव बनाए रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिधवलिया, कार्यपालक पदाधिकारी गोपालगंज सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी और जन प्रतिनिधिगण तथा शांति समिति के सदस्य उपस्थित हो रहे हैं। आज दो अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में शराब मिलने की खबर आई। मामला दियारा गंडक नदी के किनारे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यहां 588 लीटर शराब को पुलिस ने जब्त किया। इसमें आरोपी की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर जादवपुर के धर्मपुर का रहने वाला बबलू यादव है, जो पुलिस के आने से पहले फरार हो गया। पुलिस ने छोटे मोटर लगे हुए एक लोहे की नाव को भी जब्त किया है। इसी नाव से शराब की तस्करी की जा रही थी। इसकी जानकारी उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि फरार शराब तस्कर बबलू यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब इसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने दियारा गंडक नदी में सेमराही गांव के पास यह कार्रवाई की। साथ ही उत्पाद पुलिस ने मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव में भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। यहां 86 लीटर से अधिक विदेशी शराब और 12 लीटर से अधिक बियर जब्त किया गया है। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शराब को जब्त किया गया और इसमें भी दो तस्करों की पहचान की गई है। ये दोनों आरोपी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिसमें एक आरोपी मंगोलपुर का मुकेश सिंह है और दूसरा मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ही भोजपुरवा का रिजू कुमार है। ये दोनों फरार हो गए हैं। पुलिस अब दोनों की तलाश कर रही है। फिलहाल बियर और शराब को जब्त किया गया है। शिक्षा विभाग लगातार लापरवाह और जालसाज शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। अब तक कई सारे शिक्षकों का निलंबन किया जा चुका है। इसी कड़ी में अब बताया जा रहा है कि स्कूल से बिना सूचना गायब रहने और हाजिरी रजिस्टर में गड़बड़ी के मामले में एक शिक्षक को निलंबित किया गया है। साथ ही दो शिक्षिकाओं पर भी निलंबन के लिए अनुशंसा की गई है। मामला माझा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय जन टोली का बताया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यहां के शिक्षक विजय कुमार आर्या को निलंबित कर दिया है, तो वहीं शिक्षिका सरिता कुमारी और नित्यानंदनी राय को भी निलंबित करने के लिए अनुशंसा की गई है। शिक्षा विभाग में हो रही इन कठोर कार्रवाइयों से लापरवाह और बेपरवाह शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच डोमन बंजरिया गांव के पास गंडक नहर साइफन के पास मिले एक शव की पुलिस ने पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम अवधेश है जो सिधवलिया का रहने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस की तरफ से बयान नहीं दिया गया है। आखिर यह सिधवलिया का लड़का यहां कैसे पहुंचा, इसकी मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली के करंट लगने से इसकी मौत की खबर आई है। हालांकि आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज के प्रसिद्ध डॉक्टर एके तिवारी उर्फ अखिलेश्वर कुमार तिवारी ने आज जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसको लेकर डॉक्टर एके तिवारी ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उनकी आस्था है और उनके कार्यों में विश्वास रखते हुए उन्होंने अपने भारी संख्या में साथियों के साथ जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार ही नहीं पूरे देश में उनके जैसा ईमानदार और समाजवादी विचारधारा का कोई नेता नहीं है। उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जदयू के तमाम नेताओं का आभार व्यक्त किया और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने उन्हें सदस्यता दिलाते हुए पार्टी में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और कहा कि श्री तिवारी के जदयू में आने से पार्टी और मजबूत होगी। पशु चिकित्सा दल ने पशुओं की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार, पशु पालकों को पशु स्वास्थ्य और देखभाल संबंधित व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना तथा क्षेत्र में पशुधन आधारित आजीविका को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से किसानों को पशुओं के उचित स्वास्थ्य प्रबंधन और रोग के रोकथाम की जानकारी दी गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास के मार्गदर्शन में गया जी के गजाधरपुर गांव में पशु स्वास्थ्य शिविर सह किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम धान प्रति भूमि प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। इसके प्रधान अन्वेषक डॉक्टर राकेश कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। शिविर के कुल 110 किसानों जिनमें 34 महिला किसान शामिल थीं, इनको शिविर का लाभ मिला। इस दौरान 134 पशुओं जिनमें 83 बकरियां और 51 गाय तथा बैल शामिल थे, सभी को पशु चिकित्सा सेवा प्रदान की गई। पशु चिकित्सा दल ने पशुओं की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। इसके अंतर्गत कृमिनाशक उपचार, बाह्य परजीवी के उपचार और नियंत्रण तथा लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित अथवा संदिग्ध गोवंशीय पशुओं के प्रबंधन से संबंधित सेवाएं प्रदान की गई। कटिया थाना क्षेत्र के बनराहा गांव में एक महिला की हत्या हुई थी। इस मामले में हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक आरोपी की नानी थी और आरोपी अपने मामा के घर इलाज कराने गया था। नानी के साथ बगल में ही सोया था और सोते समय ही नानी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतिका के नाती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण उसे उपचार के लिए ननिहाल लाया गया था और रात्रि में अपनी नानी के साथ सोने के दौरान उसने बिछावन के नीचे रखे दबिया से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में शोक व्याप्त हो गया है। अपनी नानी की हत्या करने वाले आरोपी साहेब हुसैन उर्फ झामलाल पिता अनवर मियां साकिन इमिलिया थाना भोरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया एक दबिया और चाकू पुलिस ने जब्त किया है। अब आरोपी पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शिक्षा विभाग के कार्यों की गई समीक्षा। छात्राओं को महिला सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य योजनाओं की दी गई जानकारी। पर्व त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। पंडालों का हो रहा है लगातार निरीक्षण। लापरवाह शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई का दौर जारी। आज भी एक शिक्षक हुए निलंबित। कई जगह से पकड़ी गई शराब और सड़क हादसे में हो गई एक बुजुर्ग की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
17: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
14: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
17: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
14: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
17: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
14: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
9: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
18: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
19: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
20: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
21: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
20: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
21: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
22: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
23: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
22: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
24: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
25: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
26: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
27: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
26: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
27: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 51 पे।
4: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप गाने के फरमाइश करें और नए गाने की वजह से आपकी फरमाइश को हम ना सुनाएं। तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो पुराने गाने के फरमाइश के साथ ही जुड़ सकते हैं। और कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है अभी मधुसरिया से, राजीव कुमार यादव का, कहते हैं कि मुझे सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने का बोल दिए हुए हैं, भक्ति कौन फुलवा फुलेला, चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे आगे अभी आप ही का मैसेज पहुँचा हुआ है, तो आपके गाने प्ले करते हैं। और जो भी श्रोतागण जुड़ना चाहते हैं अभी टेक्स्ट मैसेज करें। जितनी जल्दी आप लोग गाने के फरमाइश के साथ अपना मैसेज हमारे पास भेजेंगे, उतनी जल्दी आपकी फरमाइशों को पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल इंजॉय करते हैं हम सभी राजू जी के गाने के साथ रेडियो 94.4 FM पे।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं हम सब और अजीत आनंद जी की आवाज़ में। और यहाँ पे आगे भी मैसेज कई पहुँचे हुए, आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि तेरी है न मेरी वक्त का हेरा फेरी। रीता गुप्ता तिरुवरुवा से जुड़ी है, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सुनो भैया, कल मेरा गाना नहीं बजा था, आज प्लीज़ बजा दीजिएगा। और इस मैसेज को करती हैं पलक कुमारी भिड़िया से। तो पलक, कल आपकी फरमाइश हम पूरी कर चुके हैं और पवन सिंह का आवाज़ में आपने छठ गाने की फरमाइश की थी, तो हमने कल गाने प्ले किए और एक गाने के साथ साथ दो श्रोताओं की फरमाइश पूरी हुई जिसमें आपका भी नाम शामिल था। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, मुझे ये गाना सुनना है जिसका बोल है। बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। दिलीप जी, आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सॉन्ग सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते आपको और मैं भी जुड़ गई हूँ निशू। तो बिल्कुल, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। काफ़ी प्यारा सॉन्ग माता दी का और आज मुझे भी सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। रोशनी कुमारी मानिकपुर से जुड़ी हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैसेज तो आते जा रहे हैं लेकिन गाने भी सुनने हैं, तो अगले गाने हम प्ले करते हैं। और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है रीता जी की तरफ से, तो इन्हीं के गाने प्ले करते हुए इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

0: युवा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
7: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
6: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
7: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो जिम 94.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज में लिखा गया है कि फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, तीसरा दिन है नवरात्र का आनंद लीजिए, चांद को चांदनी मुबारक, आसमान को सितारे मुबारक, हमारी तरफ से आपको शरद नवरात्र मुबारक, माता रानी के आशीर्वाद से पहले भक्ति को, शक्ति से पहले खुशी को, गम से पहले आपको सबसे पहले जय माता की। नवरात्र नया सवेरा खुशियों से भरा हो हर दिन तुम्हारा। सुनो भाई नमस्कार, और आप और मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि अगर जगह खाली हो तो फरमाइश करें, अभी तो क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी समय है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, आलिशा माहिरा गोपालगंज से एक सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अगले गाने की फरमाइश हम ले करते हैं और सुनते हैं। और अगले गाने की फरमाइश हम सभी सुनेंगे जिसका बोल दिया गया है, मैं मस्त कुड़ी तू मस्त मुंडा है, सुनाना है आपको शगीर जी और रोशनी जी, वीरेंद्र गुप्ता भैया, निशा जी, रोशनी जी और उमा शंकर जी, सबीता जी को और समीर भाई को, सभी दोस्तों को। तो बिल्कुल इस मैसेज और गाने की फरमाइश करने वाले दिलीप जी हैं दिल्ली से, तो आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे।

ट्रेडरियम जिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का काफ़ी कमाल के गाने थे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अगली गाने की फरमाइश रोशनी की तरफ से पहुँची है और गाने की फरमाइश किया गया है, चली चली ये पिया बारे मंदिर में दिया। डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं सब, प्रियांशी, पूजा, सोनाक्षी और कुछ प्यारे प्यारे रेडियो दोस्त हैं, रानी रजनी, संतरा कुशवाहा, सबिता चौहान, आशा चौहान, निशा सिंह, निशा भारती, शबीना पी, इरफान भैया, कमरान भैया, हरकेश भैया, गुलाम भैया, समीर भैया, दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे अभी मैसेज पहुँचा हुआ है सुपर संग भैया, थैंक्स मुझे सुनाने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि शुक्रिया भाई सॉन्ग सुनाने के लिए, चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए दिलीप जी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो प्रणाम सलाम सर जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे और लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज उजवलिया मचका गांव प्रखंड से, और

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
1: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर योग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
1: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम 6.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेम 6 सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और सॉन्ग भोजपुरी सुनना है, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करती हैं निशा भारती। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और कुछ पहले मैसेज पहुंचे हुए, तो उन मैसेज में से अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश करती हैं आलिशा महिरा गोपालगंज से, और गाने का बोल देती हैं सजा पौनी प्यार कई लाके। तो सुनते हैं।

रेडियो रेमझिम 94.4 FM आप सब सुन रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, ओहो बहुत दर्द है प्यार में, मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है अगली गाने के फरमाइश, भोजपुरी ही पहुँचा हुआ है। और गाने का बोल दिया गया है, ऐसे तो सासू नहीं जाए देली बहारी, कहेली पोतोहिया बन जाई सहरी। डेडिकेट करती हूँ आपको एंड सोनी मैम, सुरति मैम, दिव्या मैम, भारती मैम, मनोरमा मैम, निशा सिंह एंड निशा पांडे, सुधा सिस्टर और शिल्पी सिस्टर, रोशनी सिस्टर, शाहिदा अंसारी एंड प्यारे प्यारे और लिसनर को। तो चलिए आपको हम सुनाते हैं और आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे।

एगो औरत दुर्गा माई के दर्शन करे खातिर अपने पति देव से मनुहार कर रहल बड़ी। तयाई सुनल जाओ उनकर भाव का बा।

रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे अभी जो गाने हम सभी सुन रहे थे, और उस गाने को प्ले करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि इस गाने की फरमाइश जो की थी उन्होंने बीच में से गाने का नाम बता दी थी, और हमें लग रहा था कि पता नहीं ये गाने है कि नहीं। तो आप जब भी गाने का फरमाइश करें आप मुख्य नाम बताएं, ताकि हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट ना हो आपकी फरमाइश पूरा करने में और समय बर्बाद ना हो। गाने चेंज करने के बाद से कुछ समय बर्बाद चले जाते हैं, और जो गाने बजे हुए रहते हैं और जो समय कट जाते हैं तो फिर लौट के नहीं आते हैं। तो आप उस गाने की फरमाइश करें जिसको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और आगे अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। इस गाने की फरमाइश करते हैं संदीप जी, और गाने का बोल देते हैं नफरत की दुनिया छोड़ के खुश रहना मेरे यार। तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए देखा जाए, लिखा गया है कि सोनू भाई, प्यार में केहू के चैन तो केहू के खुशी छीन लेवेला, प्यार कैनी सजा पहला के, सुपर सॉन्ग। दिलीप जी मैसेज किए हुए हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिखा गया है कि बिल्कुल दुर्गा पंडान सैया हमरो के ले ले चली, काफ़ी प्यारा सॉन्ग, थैंक्स सिस्टर मुझे सुनाने के लिए, मैसेज करती हैं रोशनी। आगे बढ़ते हैं, अब अगले गाने की फरमाइश सुनते हैं हम सब रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे।

रेडियो रमसीम 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे समय जो है समाप्ति का हो चुका है, तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त किया जाए और अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्ति करते हैं। यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे। सुरेश जी गाने के फरमाइश किए हुए त्रिबिरमा से और गाने का बोल देते हैं, माँ मुझे माँ से मिला दें। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे। अभी मेरे पास कई हैं और मैसेज सारे, तो कई गाने का फरमाइश तो हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं और अगले मैसेज मेरे पास अब आगे अगले दिन शामिल करने का प्रयास रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सब सुनते रहे रेडियो रमछीम 94.4 FM जो हमेशा कहता है सुने दिल से। नमस्कार।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: कभी कभी।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज आपने सुना राग पहाड़ी झिंझौटी में सरोद वादन। कलाकार थे पंडित प्रभात कुमार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आइए अब सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
3: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
2: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में 3 नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि 2 नगर पालिकाओं और 1 नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को एसआईआर से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: रेडियो रिम जिम
1: सुनो दिल से, दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
0: रेडियो रिम जिम
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: तू जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: कॉल करो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो हेलो नमस्ते नमस्कार कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबके दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया है हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का। तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029494। जी हाँ 8029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: नमस्ते मैम।
6: जी नमस्ते।
5: आज से मेरा जल्दी लग गया, दोबारा में लग गया।
6: जी
5: आज से मैंने दोबारा ही डायल किया, दोनों मतलब चक्कर से लग गया।
6: अच्छा जी।
5: हाँ
6: बढ़िया। वैसे नाम बता दीजिए अपना।
5: नाम मेरा उमा शंकर सिंह है।
6: और कहाँ से?
5: उत्तराखंड से बोल रहा हूँ मैं।
6: तो आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना?
5: बस बिल्कुल। अभी तो दो तीन दिन पहले बहुत भयंकर तूफान आया था, बोले गिरे थे, बहुत भयंकर आधी तूफान आया था, बोले आए थे। अरे हमको भी कुछ लाजी दे दो, मैं मुझे भी गीत सुनना है।
6: जी बिल्कुल बता दीजिए।
5: जाते हो चले जाना आखिरी सलाम लेते जाना, जाते हो चले जाना आखिरी सलाम लेते जाना।
6: तो उमा शंकर जी ये गाना आप मुझे गा के बताइएगा।
5: गाना गाने आता तो मैं जरूर गा लेता। गाना गाने का हमने कभी शौक रखा ही नहीं, बस खाली गाना सुनने का शौक है मेरा। हमारा रेडियो 5 बजे से बजने लगता है।

0: सुबह सुबह 5 बजे से ही।
1: अच्छा।
0: हाँ, और रात को बंद होता है 1:30 बजे रात को। हाँ,
1: तो मतलब लगभग कितने समय से सुनते आ रहे हैं ये कार्यक्रम?
0: आपका कार्यक्रम तो मुझे लगता है कि साल भर से, तो हमको बहुत बार में पसंद है ना, बाकी हम और भी चैनल पे सुनते रहे।
1: दिल से धन्यवाद करते हैं आपको। और गाना आप बताया, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: गाना तो जितने भी श्रोता सुनने वाले हैं रिम झिम के सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा। अब तो 4 लोगों का नाम लो, बाकी फिर वो टाइम में बात होता है, फिर काम भी नहीं था होता। ठीक है, ठीक है,
1: ठीक है,
0: नमस्ते मैम।

0: जी
1: योगेश जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है।
1: तो और बताइए क्या हो रहा है?
0: अभी तो घर में है, बढ़िया है, बाकी सब ठीक है।
1: चलिए बढ़िया। तो क्या है आज की आपकी फरमाइश?
0: अवतार फिल्म से सुनवा देंगे। चलो बुलाया है, माता ने बुलाया है।
1: ओके, और नाना दीदी के भी करिएगा।
0: श्रीपाल गोयल जी है, धीरज अग्रवाल जी है, अभिनीत पहुजा जी है, प्रेमचंद अग्रवाल जी है और सभी साथ।
1: ओके योगेश जी, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: धन्यवाद
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
7: सलाम
6: जी। वालेकुम अस्सलाम।
7: कैसे बने जी?
6: जी बिल्कुल ठीक बनी, अपन बताएं।
7: ठीक बात है, नाश्ता तो भाई है जी।
6: हाँ हाँ, नाश्ता तो भाई ला रहा हूँ भाई की ना।
7: जी हम नाश्ता पानी इंतजार बात हो जाए।
6: जी
7: जी बात अपने
6: जी कहाँ रह
7: नाम
6: प्रचार कर दे
7: रानी लोग। बहुत अच्छा नाम बना, और कौन बात नहीं है रानी मुखर्जी।
6: हाँ कह की रानी मुखर्जी से नवाज बाटे।
7: हाँ जी सही कहा, दिलीप राम जी मैंने आदमी प्रचार कर देनी ना, सही कहा तो लगभग
6: करेगा। वहाँ की अब जब भी बात करें तो कहे नहीं कहा की रानी मुखर्जी से बात होते।
7: खराब नाम थोड़ी बासन आये तो हम रानी मुखर्जी कह देते।
6: जी जी बिल्कुल
7: बोलिए, तबे करे मोबाइल वाली रानी मुखर्जी।
6: हाँ ठीक है बाबू,
7: ठीक बानी ना बाबा?
6: जी जी बिल्कुल ठीक बानी, बताइए।
7: गाना तो बड़ा बढ़िया पसंद से अपना बजा लिया, दिलीप राम जी का सुनाई का जाना सुनो कि ना रही धाम तो सुनाई बड़ा विजोर गाना। हाँ कॉलर रंग के रोड अपना पसंद से गाना बदल जा दे रानी मुखर्जी जी, बड़ा विजोर राउू पसंद ठीक बा।
6: जी जी रोए लो खानी है ना।
7: कहता है सब ठीक बा नू?
6: हाँ हाँ सब के ठीक बाटे।
7: मेला लो देखे ना जाए,
6: मेला अभी ना भी बात
7: है। हाँ अभी बात है, दुकाने को तो कही बा छात्र दल बनता राजा दल बनता बड़ा अच्छा से बना था। जी
6: जी दली वही से गाना बता दी, कौन गाना सुने?
7: जानते मैं कौन सी गाना सुने बा?
8: दिल धड़कता क्योंकि प्यार में
6: बिल्कुल। हम तो ननवे सुन के खुश हो गई।
7: हाँ तो बड़ा बढ़िया गाना बजा दे सुन के एकदम खुश हो
6: जाला। हाँ गाना जन बतनी होके उसे सुनवाए के भी चाहता नहीं।
7: हाँ सुनवा रौरा सुने मेन सुन सबको सुनी, रानी बाड़ी करिश्मा बाड़ी जितना लोग हमारा नाम धरते सबको सुनी। हाँ तो वैसे कहते हैं जितना लोग नाम गाना सुना सबको गाना सुनी।
6: जी जी चलिए तो फिर गाना प्ले करते।

0: हेलो, सलाम अलैकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग 90.4 एफएम में।
0: हाँ मैम, हम जाकिर हुसैन राज्य बिहार गोपालगंज जादवपुर से बोल रहे हैं।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: सब ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छा रहना चाहिए मैम। तो मैम गाना सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, बता दीजिए।
0: हाँ मैम, गाना सुनना चाहते हैं, मन सपना के मोहल्ले बना के दुनिया ढेला चलाई, जिंदगी के खेला समझ में ना आवे।
1: अच्छा, और गाना ये के डेडिकेट भी करके चाहता नहीं?
0: हाँ, सुफियालम है, मेराज है, जितले शर्मा है, यीशु पल्ली है, और मोहम्मद कुक है, उसके बाद और रेडियो रिंगिंग को जितना हमारे श्रोता है उन लोगों और आपको।
1: जी जाके भी, चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके ओके
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
6: गाना सुनना था, इसलिए कॉल कर रहा
7: हूं। जी बिल्कुल, गाना सुनवाएंगे। पहले नाम बता दीजिए अपना।
6: नाम हमारा रफी कर लीजिए।
7: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
6: गाना सुने हो गया
7: जी, यार आपका हुआ है।
6: हमारा भी हो गया अभी। करना
7: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा। जी जी, गाना तो बहुत ही अच्छा है और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं।
6: आपको सुनाना है, रश्मि जी को सुनाना है और जितने भी रेडियो में सुनने वाले सब लोग को सुनाना।
7: जी जी, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं तेरी सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते। किसके
0: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
1: लिए दिल से धन्यवाद है आपको। और सब सुनाइए, कैसे हैं?
0: जी सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं।
1: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, क्रीतपुर बगहा पूर्वी चंपारण से।
0: जी, और बताइए क्या हो रहा है।
1: जी अभी तो आपकी कोयल जैसी मधुर आवाज में बातें कर रहा हूँ सुनकर, और साथ में बिजनेस व्यापार भी चल रहा है, दुकानदारी।
0: अच्छा जी,
1: जी भारती जी बोल रहे हैं?
0: नहीं
1: आपका शुभ नाम?
0: जी, मेरा नाम मनोरमा।
1: मनोरमा।
0: जी
1: अच्छा ठीक है। और मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
0: जी मौसम बता दूँ तो धूप निकला हुआ है।
1: जी बहुत अधिक गर्मी भी यहाँ पर है, धूप के साथ में लग रहा है कि मई जून का महीना चल रहा है, वैसा मौसम है अभी।
0: जी,
1: जी
0: अपना नाम एक बार और बता दीजिए।
1: रामविलास प्रसाद कुशवाहा, क्रीतपुर बगहा पूर्वी चंपारण से।
0: अच्छा जी, तो
1: जी
0: आज कौन सा गाना सुनिएगा आप।
1: जी फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में, भोजपुरी सॉन्ग है, और गाने का बोल है तू दीवानी हो तो आ जा।
0: क्या गाना, आप मुझे गा के बताइएगा तो लाइन।
1: जी गाता नहीं हूँ, सिर्फ सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा जी, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप गा के बताते तो अच्छा लगता।
1: जी बहुत अच्छा, आपकी भी आवाज बहुत अच्छा है, कोयल जैसी मधुर आवाज है। पहली बार आपसे बातें हो रही है।
0: जी, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज थी, इसीलिए दोबारा नाम पूछी आपसे।
1: जी। और यह गाना सबसे पहले मनोरमा जी आपको सुनाना चाहता हूँ,
0: जी थैंक यू।
1: और दोस्त हो गए संजय शाहजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू का, अभय कुमार, सुदीप कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, आधा कुमार, सोनू कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, बीता जी, सुजीता जी, सुजमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जसने जी, अंचल कुमार जी, कंसराज जादव जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी मनोरमा जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी धन्यवाद।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello,
4: hello, hello, hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, नमस्ते
7: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से बोल रहा हूँ। लाइन बहुत बिजी चल रही थी मैडम जी।
7: जी गोपाल जी, क्या करिएगा, एक कॉल करता है तब तक दूसरा आ जाता है।
6: आज बहुत लाइन बिजी है जी, मान लीजिए वो 12 बजे से लगा रहा हूँ, अभी 12:30 बजे जाके लगाया।
7: जी जी, चलिए कोई बात नहीं, अब लग गया ना।
6: हाँ लग गया, तो अभी खेत पर है, अभी तो मक्का इकट्ठी करेंगे और नवरात्रि भी चल रहे है जी, मान लीजिए।
7: जी जी,
6: और क्या,
7: तो क्या हो रहा था अभी?
6: अभी तो कुछ नहीं, मक्का इकट्ठी करके मक्का निकलाएंगे और अरे की और घर पे भी जाएंगे, धूप बहुत पड़ रही है।
7: अच्छा जी, धूप है अभी?
6: धूप है। और आपको उधर कैसा मौसम है?
7: हमारे तरफ तो धूप निकला हुआ लेकिन थोड़ा कम ही है
6: जी। सुबह सुबह ठंड पड़ने लग गई, अभी तो मान ली सर्दी लगती है सुबह सुबह।
7: जी जी, अब ठंडी का मौसम जो आने वाला है
6: जी। और क्या, वो माता जी का भजन सुनना है?
7: बिल्कुल बता दीजिए।
6: वो माँ वैष्णव देवी का सुनना है, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकारो मैया, ऊंचे भवन में होती है जीवा लगा।
7: जी गोपाल जी, गाना तो बहुत ही अच्छा है, क्या गा के बताइएगा ये गाना?
6: जी, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकारो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सुरेश वाटकर और जी अनुराधा पौडवाल की आवाज में।
7: जी जी, बहुत ही अच्छा गाना है।
6: और क्या, ये पिक्चर भी देखी है माता वैष्णो देवी की है।
7: जी जी, और गाना आप किसी को डेडिकेट भी करिएगा?
6: डेडिकेट है सुनील साहू जी है, ज्योति जी है, जीतन धाकड़ है, दीपक सेन है, ये सभी के लिए है। वो भी झांकी लग रही है, हमारे बैरोन पर हूँ अभी तो जाएंगे अभी तो माफ कर।
7: जी जी गोपाल जी, चलिए तो फिर आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
6: जी करिए
7: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.16 सनमा।
0: जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते।
0: और क्या हाल चाल बाटे?
1: जी ठीक बाटे, अपन बताई।
0: बढ़िया बा, सब क्या होता है?
1: क्या हुई कुछ ना, बस लोग सभी से बातें होता।
0: अच्छा, गोपालगंज में बारिश उरिश नहीं हो?
1: ना बारिश तो नहीं हो, धूप निकल बा। रोवा तरफ मौसम कैसन बा?
0: हमारा तरफ तो होता बारिश नोएडा में।
1: अब ऐसे नाम बता दिया अपन,
0: वैसे पहचाना?
1: जी जी, हम तो पहचाना था, लेकिन फिर भी पूछे के पड़ेगा।
0: फिर भी पूछे के पड़ेगा
1: जी जी, ताकि अगला लिसनर लोग को भी तो पता चले।
0: अच्छा, और छोटा भाई बोल रहा है ना?
1: जी जी, विकास जी।
0: विकास
1: जी,
0: झुमतापुर से।
1: जी तो रोगा ठीक बानी?
0: हम सब ठीक बानी, रोगा कैसन बानी मैडम?
1: जी जी, हम ठीक बानी। आज कौन सा गाना सुने?
0: आज गाना सुना यही वाली मैडम।
1: गाना तो बहुत ही अच्छा बा।
0: बहुत अच्छा बा
1: जी जी,
0: कल्पना
1: कल्पना
0: के आवाज में कहते
1: जी जी। और ये गाना के उसे सुनवाए के भी चाहता नहीं रहूँगा?
0: रौरा लोग सुनवाई बारी अपने मम्मी के, और हम अपने घर में फैमिली के करते हैं।
1: अच्छा विकास जी, चलिए तो फिर और गाना हम प्ले करता नहीं।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
6: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: अस्सलाम वालेकुम मैडम
6: जी। वालेकुम अस्सलाम।
7: गाना सुने के बाद
6: जी बिल्कुल बता दी।
7: नवरात्रि चला था तो हम मुसलमान हैं, बाकी तब फिर भी दुर्गा जी के गाना सुने के बाद हाजिर के खड़ी हूँ द्वार तेरी माँ, आज चुनरी चढ़ा दूँ द्वार तेरी माँ, ये गाना सुनने के बाद। जय माँ विष्णु देवी के गाना हो
6: जी। जी
7: तो गाना सुनाए
6: जी, हमारा के गाना सुनाए। पहले अपना नाम तो बता दी।
7: नाम हमारा मौला दीदिया।
6: और कहाँ से?
7: हम कैशोरिया गांव से बोलते हैं। पहले बाबे राजा भूजा बेची ले
6: जी, जी।
7: तो गाना सुनी ले रहा रेडियो रिमझिम, एकदम दिल खुश करे वाला।
6: रेडियो के माध्यम से सुने?
7: हाँ मैडम
6: जी, रेडियो के माध्यम से सुने नहीं की मोबाइल ऐप के माध्यम से?
7: मोबाइल से सुने नहीं, मोबाइल से कनेक्ट करके एगो किन्ने बनी डीजे छोटका वही पर सुनी ले।
6: अच्छा, कैसा लगे ला कार्यक्रम रेडियो?
7: बाप दिल खुश हो जाला।
6: अच्छा जी।
7: यूट्यूब भूला गए बनी, यूट्यूब से सुनत रहनी पहले, जब तक रेडियो रिमझिम सुनत रही। हम तो जब से शुरू भल तब से, जब से रेडियो रिमझिम शुरू भल बनल बन जा रही।
6: हाँ,
7: हाँ।
6: अच्छा, चलिए एक खातिर हम के तहे दिल से शुक्रिया करत हनी। और जो बतैनी हो के सुनवाई के भी चाहत हनी?
7: हाँ हाँ, सब हिंदू मुस्लिम सब के सुनी, सब जो सुना था रेडियो रिमझिम सब सुनी
6: जी। जी तो फिर और गाना हम प्ले करते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैं।
0: जी नमस्ते,
1: कई समाचार आप?
0: जी बिल्कुल ठीक बा, आपन बताई?
1: गाने सुने
0: जी बिल्कुल बता दी।
1: माता रानी गाना सुने
0: कौन सा?
1: माता रानी राजा के
0: कौन भी गाना? अच्छा वैसे नाम बता दिया
1: परमात्मा कुमार।
0: अच्छा जी तो अभी बताए रहो ठीक ठाक बानी नो?
1: बानी रहो ठीक बानी।
0: हाँ हाँ हाँ वो बढ़िया बानी रहो दुआ से।
1: सोमवार के सोमवार कॉल हम कर ही ले रहे हैं।
0: अच्छा जी जी तो रिकॉर्डिंग चले ला सोमवार बुधवार और शुक्रवार आप रोबर तीन दिन ना ना जी रोवा मतलब 12 बजे वाला शो में जुड़ा था ना तो वो में एक हफ्ता के बाद चले ला है मेरे रोवा बुधवार सोमवार
1: बुधवार सोमवार शुक्रवार।
0: जी जी मैं रोवा कॉल करा था
1: तीनों
0: दिन।
1: नाम का बजे?
0: जी हमारा नाम मनोरमा।
1: अच्छा
0: जी और

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: माई चॉइस
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: मैं झारखंड का नाम स्वीकार कर रहे हैं
6: जी। जी प्रणाम।
7: भाषा में बोलते नहीं है
6: मनोरमा
7: जी। जी हम कंफ्यूज हो जाते हैं
6: जी।
7: सुधीर सर बोलते हैं जिला देव
6: जी। जी कैसन बानी?
7: बिल्कुल ठीक बानी।
6: बोले किसी गई नहीं?
7: कोशिश कर रहे भोजपुरी में बात करें, हल्का फुल्का बोल रहे।
6: जी जी बहुत ही अच्छा लगा था। अब तक कंफ्यूज होकर रही है की रघुआ इनकी की है जी। तो बताइए क्या होता है?
7: इसका होता है अभी बीच में हमारे घंटे में एक क्लास के, तो कोशिश करते करते अकाउंट लगी।
6: तो क्या बात के
7: फरमाई से पुराने भोजपुरी फिल्म दंगल फिल्म के गाना गाय कलाकार आशा भोसले और महोदय के गीत के बोला फुट गई ली किस्मतिया भाई गई ली जुलमुआ चोरे संग निकट से हो गए कोई दवा गवनवा लगनवा।
6: एक बार और बता दी।
7: फुट गई ली किस्मतिया भाई गई ली जुलमुआ चोरे संग निकट से हो गई कोई दवा गवनवा।
6: और गाना क्योंकि सुनवाई
7: जितने भी रेडियो इंजन के लिसनर है सब सभी कितना प्रेमी और कुछ फ्रेंड्स भी हैं। पता ज्यादा से श्रीधर पता है मदन कौर कुमारी कृष्ण कौर इन सब सारे पार्टी के डेडिकेट करते हैं।
6: चलिए तो फिर गाना हम प्ले करते हैं
7: जी।
6: मैम सुनते रहे इन सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।

रनिया हाय रे तोहरा नखरा जैसन फिल्म की रनिया के बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा।

0: पकड़े गर्दनिया ये छोड़ के चरनवा के बाप तोरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा
1: संग हुई गवा लगनवा टूट गईले किस्मत।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते दीदी
1: जी। नमस्ते,
0: क्या हाल बा?
1: जी ठीक बा, अपन बताई।
0: ठीक बा, हम डोरोगा से।
1: अच्छा जी, आज लेट हुई फोन करे में?
0: आज लेट से कहीं नहीं है।
1: अच्छा, जान बुझ।
0: हाँ, जान बुझ के लेट से कहीं नहीं है। कहीं है की बस तो बिजी बिजी बताओ
2: तरह याद नहीं के पास हम याद पढ़नी है।
1: अच्छा चलिए,
0: नहीं लगता है मतलब तो बर्तन धोता निशान।
1: अच्छा,
2: तो हम याद पाट नहीं है।
1: ठीक कहीं नहीं है,
0: आज रिकॉर्डिंग ना हुई हमारे।
1: अच्छा देखी हो गई, लास्ट कॉल रहिए बाब।
0: लास्ट कॉल बा, हम कहीं बंद कर दिलो तो फिर धरा देनी है।
1: हाँ, हमके पता लगे रहुआ करे मुझसे तो वेट करते रहनी है।
0: ठीक है, खाना वाना हो गई बा?
1: हाँ हाँ, खाना हो गई बा। नाम गाना बता दिया?
0: गाना सुने के बटे बजा दी, भक्ति सॉन्ग कोनो बजा दी पवन सिंह के।
1: अच्छा, कोनो भी?
0: हाँ, कोनो भी बजा दी भक्ति सॉन्ग।
1: चलिए, क्योंकि डेडिकेट भी करे।
0: हाँ, सबसे पहले तो रहुआ की रही, एक भारती दीदी के रही, और गणेश भैया के रही, और रानी दीदी के रही, और उत्तम सोनी के रही, और रेशमा जी के रही, और बीटू प्रजापति जी के रही, और जितना सुनते हैं सब के।
1: जी जी,
0: हमारा अच्छा लगे लगा बोले नी तो।
1: जी जी, ऐसे लगे जैसे कि लागत है कि कहिया के पहचान तनी सन।
0: चलिए ठीक है बा
1: जी, वैसे नाम बता दी।
0: नाम करिश्मा कुमारी पीपर नारायण से।
1: जी जी, चलिए तरह गाना हम प्ले करता नी।
0: ठीक बताओ
1: जी, सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफ।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्ते मैडम जी।
5: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: कैसे हैं मैडम जी?
5: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: मैं भी ठीक हूँ।
5: अच्छा जी,
6: तो और समाचार बताइए?
5: सब बढ़िया है। आपने बताइए, आप नाश्ता वास्ता की हैं?
6: हाँ, मेरा सब बढ़िया है।
5: तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
6: गाना सुना देगा आपको मैं नींद न दिल न करा।
5: ये नेहा जी गाना मुझे गा के बताइएगा।
6: गाना ना गा ले
5: ना जी, हम लोग से गवा के ही सुने में
6: अच्छा लगे। ना
5: हमारे के ज्यादा ना गाई, दो लाइन गा के सुनती तो ठीक रहे।
6: मैडम जी,
5: जी जी अच्छा लगा। ये गाना कैसे सुना के चाहते नहीं?
6: गाने से पहले आप
5: अच्छा। वैसे नेहा जी कहाँ से बोला था?
6: अच्छा,
5: बोरिस। और गाना हम प्ले करते नहीं?
6: जी मैडम जी, नमस्ते।
5: सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: सलाम
0: अलैकुम।
1: रामा कंसारी सिंह चढ़िया से बोल।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, आप अपना बताइए।
0: कैसे? बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: आज आपको मोहला फिल्म का कुछ चीज बड़ी है मस्त मस्त।
0: जी जी,
1: ये गाना आपको और जितने रेडियो रिमझिम के श्रोता सुनने वाले हैं सबको
0: कहा। ओके जी, चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki hindi bajti hai to kehte hain hello.
4: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 FM में।
5: जी मैडम जी नमस्कार।
6: जी नमस्कार।
5: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला बना मध्य प्रदेश से।
6: जी सुनील जी, क्या हो रहा है?
5: बस आपकी
6: फरमाइश। आपकी फरमाइश क्या है आज की?
5: आज की फरमाइश है मैडम जी, साजन फिल्म का गाना है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सलाम।
6: जी और डेडिकेट भी है?
5: जी गोपाल ओझा जी है, जीतेन लाहा जी है और गजराज सिंह लोधी है और केसरी सिंह राजपूत है, केसरी सिंह और कैलाश राजपूत बिटिया से, ये सभी दोस्तों को डेडिकेट रहेगा। और आपको मनोरमा मैम को, रजनी मैम को और मैडम का नाम भूल गया मैं, तीनों मैम को डेडिकेट रहेगा ये।
6: जी जी भारती जी सोनी जी।
5: हाँ भारती जी सोनी मैम को, हमारा मैम को डेडिकेट आएगा।
6: ओके सुनील जी, तो
5: ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
6: जी चलिए तो फिर प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंचिंग 90.4 FM।
5: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, रिकॉर्डिंग बंद कर, क्या हो गया, एक बार में फोन लग गया।
0: नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो चल रही है।
1: जी साहब, मास्टर बोल रहे हैं ग्राम धनाव से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: हम लोग ठीक हैं। आपका ये आज से दूसरे दशहरा है, आप लोग का बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी जी, आपको भी।
1: फर्स्ट बार लगा रहे थे, थोड़ा बिजी बता रहा था, तो छोड़ दिए, फिर लास्ट में लगाएंगे। जी जी, और सब बताइए, मौसम ठंडी तो हल्की हल्की पड़ने लगा इधर।
0: जी जी, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है ना, तो और सब बताइए, खाना वाना हुआ आपका?
1: ना, अभी तो काम में लगे हैं। आपके प्रोग्राम सुन रहे थे 11 बजे तक, फिर कॉल लगाए तो अब स्टार्ट किए, तो ईयरबड चले गए, जुड़ेंगे।
0: जी जी, तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: गाना सुनवा दीजिएगा सहंसा मूवी, वर्दी का तू रोग जमा ले, टोपी वाले कर ले जो है करना, मैं नहीं डरना, वो जग मैं नहीं डरना। और सबसे पहले भारती जी आपको और नॉर्मा जी को और जितने रेडियो रेंजिंग के सदस्य लोग हैं सभी को सुनवाना चाहता हूँ, और जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को। और हम लोग धनाव से रोशन टेलर में सुनते हैं आपके प्रोग्राम, हम लोग का 3 साल हो गया लगातार हमको आपका प्रोग्राम सुनना।
0: जी जी,
1: तो अभी और सब ठीक है, हम लोग तो सुनते हैं आपका प्रोग्राम, हर प्रोग्राम हम सुनते हैं। अब अभी से 4 बजे तक सुनेंगे, फिर 5 बजे से हेलो फरमाइश आ जाएगा।
0: जी।
1: और फिर निर्गुण लगता है तो एक दूसरे सुन लेते हैं, निर्गुण तो हमको हम सुनते हैं, बढ़िया मदन राय का हो गया, तरह शर्मा का हो गया।
0: हाँ, अच्छा लगता है।
1: हाँ हाँ
0: जी, और गाना जो बताए वो गाना आप डेडिकेट भी करिएगा।
1: जी जी, सारे रेडियो रिंगटोन सुनता हूँ, जितने भी सुनते हैं सभी को और आप लोगों को भी। अब हम लोग धनाव से भी सुनेंगे रोशन टेलर में।
0: जी जी, चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी प्ले कीजिए।
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम।

0: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. The phone game
1: बजते हैं तो कहते हैं। तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029494111 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बच्चा तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब, ओकरा खातिर हम भागल ना हई। आ जदि हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं
2: बनबू।

0: अरे एक करे जा, जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी न उतना केहू और खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हम
1: संतोष पागल नहीं।

0: तर
1: अरे करे जा हम बरसिंगा खाली गर्जे वाला बादल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: होगा कि हम ग्रेड ए पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।